बनाया, कितने दिन के लिए बनाया है? 100 वर्ष के लिए। पर 100 वर्ष के लिए जो बनाया उसमें भी शर्त है, कुरुवन नेवे कर्माणी जिजी विशेष सतगुण क्षमा। आप सत्कर्म का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक यापन कर सकते हैं, बिना सत्कर्म किए 100 वर्ष की आयु भी भारी हो जाती है। तो हम लोगों को भगवान ने 100 वर्ष के लिए राजा बना दिया है, सारा अधिकार दिया है, स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि महर्षि का सूत्र है कि कर्ता स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, परंतु फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। 100 वर्ष में आप चाहे कुछ भी करो, भगवान ही बोलने वाले हैं। परंतु जैसे ही आयु समाप्त होगी, जबरन नदी के उस पार नौका पर बैठा के भेज देंगे। यदि हम विवेक से 100 वर्ष के अंदर ही इस पार से उस पार, मतलब की धरती से स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक के बीच में जो सेतु है, उपनिषद में आता है ए सेतु विधर्णम च, यही परमात्मा सेतु है। जो मुमुक्षु है, साधक उपासक हैं, उनके लिए सेतु का काम करता है। जिस प्रकार से सेतु नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, ऐसे ही जो भगवान की भक्ति है, सत्संग है, स्वाध्याय है, यह सेतु का काम करता है। तो सत्संग स्वाध्याय के द्वारा हम सेतु का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो मनन होता है, ये मनन समझो कि मनोराज्य बोलते ना हम लोग, मनन मतलब मनोराज्य। तो हम लोग जो मनन करके एक सुंदर अपने लिए परलोक में राज्य निर्माण करते हैं, और निध्यासन के द्वारा सारे विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार होता है, और सजातीय वृत्ति का प्रवाह, इसका नाम निध्यासन है। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करते हुए सजातीय वृत्ति प्रवाह का नाम निध्यासन है। तो जैसे कि राजा ने उस पार खजाने भर दिया, वैसे ही हम लोग भी ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जो है सब कुछ वहां पर भेज देते हैं, कुछ शेष नहीं रहता है। इसके बाद इस संसार के सारे मनुष्य सारे प्राणी आप जाओगे तो भी हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे बड़े बड़े महापुरुष चले जाते तो भी हम लोग निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, रहते तो भी उनकी स्तुति प्रार्थना वंदना होती है, और जाने के बाद भी। तो मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें भगवान ने आपको 100 वर्ष के लिए राजा बना दिया, स्वतंत्र कर दिया है। अब आगे का काम आपको करना है, या आप राजभोग करें, या जो है परलोक संबंधी तैयारी करें, आपको पर निर्भर करता है। एक और श्लोक कर ले, 10वां श्लोक है।

वपुष ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरु गृणाभ्याम गिरीशयत स्वयं तस्ते ताभ्याम तव किमनुवृत्ति न फलति तवैश्वर्यम यत्नात्। भगवान के ऐश्वर्य को समझने के लिए विरंचि हरि अधः, विरंचि मतलब ब्रह्मा जी ऊपरी ऊपर गए। सृष्टि के आदि में एक प्रसंग आता है, जैसे ही ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी का निर्माण होने के बाद ब्रह्मा जी में और हरि में विवाद हुआ कि कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ। ज्येष्ठता श्रेष्ठता का विवाद देख करके भगवान शंकर ने विचार किया कि इनको हमने उत्पन्न किया, प्रजापति पद प्रदान किया कि सृष्टि का विस्तार करें पालन करें, और ये जब आपस में विवाद करेंगे तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को देखकर उनके सम्मुख एक दिव्य अनल स्कंद वपुष, अनल बोलते अग्नि को, अग्नि का स्कंद मतलब खंभे के समान ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, जो कि आकाश से भी ऊपर पाताल से भी नीचे। दोनों ने विचार किया कि जो इसका पता लगा लेगा वही हम में से श्रेष्ठ होगा और ज्येष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए, रजोगुणी ब्रह्मा जी हैं, रजोगुणी हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है, रजोगुण का स्वभाव है, और सत्वगुणी जो होता है उसका शांत स्वभाव होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु ने कहा चलो कोई बात नहीं हम नीचे जाते हैं। तो भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए। परिच्छेत्तुम यातौ, परिच्छेत्तुम का अर्थ है उस ज्योतिर्मय पिंड को नापने के लिए, परिच्छिन्न करने के लिए दोनों यात्रा किए। परंतु अनलम, अनलम का अर्थ है अलम नहीं हुए, पर्याप्त नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए। इसके बाद जो है ततो भक्ति श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के प्रार्थना करने लगे गिणद्भ्याम। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि उनकी प्रार्थना को सुन करके स्वयं तस्थे ताभ्याम, ताभ्याम हरि विरंचिभ्याम, विष्णु और ब्रह्मा के सामने स्वयं ही अभिव्यक्त हुए। तव किम अनुवृत्ति न फलती, क्या आपके अनुवृत्ति मतलब सेवा या समर्पण फलित नहीं होता है, अर्थात अवश्य फलित होता है। जब ब्रह्मा और हरि दोनों मिल करके आपके ऐश्वर्य का परिच्छिन्नता माप नहीं कर सके तो सामान्य प्राणी कैसे कर सकता है, और मैं पुष्पदंताचार भी भला कैसे कर सकता हूं। आपके ऐश्वर्य को वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, बुद्धि भी उसको चिंता नहीं कर सकती है। इस विषय में यह ब्रह्मा और हरि का प्रमाण दिया, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपका गुणगान कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। क्योंकि पुष्पदंताचार्य जी से अनजाने में अपराध हो गया था, वे भगवान शंकर के निर्माल्य को, निर्माल्य बोलते हैं पूजा के बाद जो बचा हुआ बिल पत्र जल अक्षत होता उसको निर्माल्य कहते हैं, तो निर्माल्य को भूल से उन्होंने लांग दिया था, अतिक्रमण किया था, तो क्षमा याचना कर रहे हैं। स्वयं तस्थे ताभ्याम, यही बात उपनिषद में आता है कि स्वयं ईसा तनु विवीणते, ये जो आत्मा है स्वयं ही आपके सामने अपने तनु मतलब स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। जिसको आत्मा वरण करती उसके सामने प्रकाशित वह हो जाता है। तो भगवान के चरणों में सर झुकाने से सब कुछ मिल जाता है, इस बात को दसवें श्लोक में बतलाया। अनुवृत्ति बोलते समर्पण को, आज भी जब किसी का तिरस्कार करना होता है
तो हम कहते हैं कि तेरे सिर पर हम चार जूते मारेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब सिर जो प्रधान है उसके ऊपर हम लोग जूता का प्रहार करके किसी का तिरस्कार अपमान करते हैं। और यह बात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, चाहे भारत हो या अमेरिका। परंतु हमारे देश की विशेषता है, महिमा है, कि हम अपने सिर को किसी के चरणों में झुका करके उसको सम्मानित करते हैं। और यह परंपरा पश्चिम जगत में नहीं है। पश्चिम यह तो खोज निकाला कि किसी का अपमान कैसे हो, परंतु सम्मान कैसे हो यह खोज केवल भारत ने किया। अनादि काल से हमारे यहां परंपरा है कि चाहे देवता हो या गुरुजन हो या श्रेष्ठ हो या घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों, उनके चरणों में सिर झुका करके जब समर्पण करते हैं तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। विवेक चूड़ामणि में बार बार आता है, अहंकार एक ऐसा विकार है जिस अहंकार के द्वारा जीवात्मा परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ। परिच्छिन्नता मतलब कि ये भूमा रूप था, व्यापक साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परंतु जैसे ही अहंकार हुआ कि अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, 3.5 हाथ का अहंकार होते ही, भावना होते ही अपने आप को हाड मास चाम जो मल मूत्र का भंडार है, ये जो शरीर है हमारा, आप विचार करें तो केवल मल मूत्र का ये समझो घर है। स्वयं तो चैतन्य है, निर्मल है, उस चैतन्य निर्मल को भी आपने इस मल मूत्र के भंडार में कैद कर दिया और इसी में अहंकार कर लिया, मैं हूं। जैसे अहंकार हुआ, अहंकार होने के बाद विषयों का चिंतन, अब विषयों के चिंतन करने के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। तो संसार का जड़ है अहंकार, अहंकार का कारण है अज्ञान। जब हम किसी के चरणों में अपने आप को झुकाते हैं, सर रखते हैं, तो वहां पर अहंकार गलता है और अहंकार के विसर्जन से परम सुख की उपलब्धि होती है। सारे शास्त्रों का तात्पर्य है अहंकार को विसर्जित करना। इसलिए विसर्जन में तात्पर्य है क्योंकि प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, अपने जीवन के अशेष विशेष दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है। और यह तभी उपलब्ध होगा जब हमारा अहंकार विसर्जित हो जाए। यह प्रत्यक्ष है, हम सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में अहंकार नहीं होता है, यहां तक कि मैं भी विसर्जित हो जाता है, मैं भी समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति में जाने के बाद यह मैं हूं ऐसा भान नहीं होता है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, विद्वान हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सेठ हूं, कोई भी अहंकार नहीं होता है। न देश का अभिमान, न क्षेत्र का, न काल का, न भाषा का, न जाति का, न गुण का, न कला का, कोई अभिमान नहीं होता है। और जब तक अभिमान होता है तब तक नींद भी नहीं आती है, आप नींद की एक के बाद एक गोली खाते जाइए परंतु नींद नहीं आनी है। और बिना निद्रा के सुख की प्राप्ति नहीं होनी, बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। जैसे ही अहंकार विगलित होता है वैसे ही आप परमानंद में डूब जाते हैं, सारे दुख समाप्त 4-6 घंटे के लिए। आए दिन ये प्रत्यक्ष सबके जीवन की अनुभूति है। जागृत अवस्था में भी यदि हमने अहंकार को गला दिया, विसर्जित कर दिया, तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है, जिसको कहते हैं कि बड़ा दुख है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, तो इस संसार में रह करके भी परमानंद की अनुभूति होगी। जैसे सुषुप्ति में होती है वही आनंद जागृत में, स्वप्नावस्था में भी हो सकता है, बशर्ते हम अहंकार को गलाने का अभ्यास करें। पर आज की तो पढ़ाई ऐसी है उल्टे हमारे मन में अभिमान पैदा करती है, सीमित अहंकार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरुजनों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवनी में भी आता है,
दसम स्कंद में, वे भी अपने सुधर्मा नामक सभा में जाने के पूर्व वसुदेव देवकी और बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखकर नमस्कार करते, इसके बाद उद्धव जी के साथ सुधर्मा नामक सभा में जाते थे। परंतु आज हम लोगों को संकोच होता है कि हम तो इतने बड़े, हम कैसे जो है माता पिता बड़े बूढ़े के चरणों में सर झुका। एक नया परंपरा चला है ना, हाथ से अत्याधुनिक है, इसको कहते हैं कि ये भी नमस्कार का डेवलप है, विकास है, है? हाँ देखो गिरीश भाई बढ़िया बता रहे। एक बार मैं भी कहीं फोन सुन रहा था हरिद्वार में, तो फोन तो महाराज जी का था अपने दसम पीठाचार्य जी का, तो हमारे यहाँ का एक ही फोन का कनेक्शन सब जगह है, कोई भी उठा सकता उठाता है। तो उठाया तो उसने कहा हाय महाराज जी है, हमने कहा हाय क्या होता है पता ही नहीं था, उन्होंने कहा हाय हाय यहाँ कोई नहीं भाई, तो वो समझ गए कि ये जानते नहीं हाय का मतलब क्या होता है। मैं सोचा कि हाय कोई आदमी होगा, हाय कोई जो है बात करना चाहती है, कोई स्त्री फोन की, अब बताओ आप नमस्कार है भी हाय कहते हैं, तो वही हाय जो है ना पूरा जीवन भर लगा रहता है। देखो हमारे यहां जब जन्मदिन मनाते हैं ना तो दीपक का प्रज्वालन करते हैं, जितने वर्ष जन्म के बीत जाते हैं, मान लीजिए किसी के जन्म के 50 वर्ष बीत गए ना तो 50 दीपक जलाते हैं, ऐसी परंपरा है पुरानी प्राचीन। तो 50 वर्ष बीत गए तो 50 मिट्टी के दीवा में घी या तेल भर के जलाते हैं, जलाने के बाद जो है भगवान का स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, मिठाई बांटते हैं, मतलब कि जीवन में रोशनी फैले। और वैसे भी जब घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, ये घर का चिराग है, ये घर का दीपक है, हमारे कुल परंपरा में रोशनी फैलाएगा। परंतु पश्चिम में क्या होता है, उल्टा, दीपक को बुझाते हैं ना आप, केक काटते हैं दीपक को बुझाते हैं, तो दीपक बुझाने का मतलब कि वे जो है चाहते हैं कि बस, जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू को देखो दीपक पसंद नहीं आता है, जो भी नक्तर उल्लू होगा वो दीपक को बुझा देगा, या जो है सूर्य की भी निंदा करेगा कि सूर्य हमारे काम में खलबली मचा रहा, वो अंधेरे में जाके छिप जाएगा। वैसे महाराज जो पश्चिम वाले केक काटते हैं तो आप देखे होंगे ना, दीपक बुझा देते हैं, मतलब इनको जो है ये जो है उसी को अंधकार को पसंद करते हैं, अंधकार में जीना चाहते हैं। अंधकार होगा तो बहुत समस्याएं आएंगी, अंधकार होने के बाद आप अपने आप को ही पहचान नहीं सकते, ना दूसरे को पहचान सकते, ना बड़े बूढ़े को। इसीलिए हमारे जब जन्मदिन मनाते हैं तो पहले जो है ना दीपक प्रज्वालन होता है, भगवान का सुमिरन होता है कि आपकी कृपा से हम जो है इतने वर्ष तक सकुशल आयु बिता लिए, आगे की आयु वैसे बीते। तो देखो भगवान राम प्रातः काल जो बड़े बूढ़ों को नमस्कार किए, तो नमस्कार करने से क्या छोटे हो गए कि बड़े हुए, ईमानदारी से बताना, छोटे नहीं हुए। और हनुमान जी की पूजा उनसे ज्यादा होती है, राम जी के मंदिर तो कम मिलेंगे आपको, हनुमान जी के मंदिर बहुत ज्यादा है। हनुमान जी देखो हमेशा वज्रासन में बैठ के हाथ जोड़े रहते हैं कि जो सेवा जो हुकुम जो आज्ञा, किम अनुवृत्ति, बस किम मतलब क्या अनुवृत्ति है, क्या आज्ञा है, हमेशा राम जी के तरफ देख करके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो सेवा की बड़ी महिमा है। यदि हमारा अहंकार गल जाए, गलाने का तरीका है, यदि हम बड़े बूढ़ों के चरणों में सर झुकाते हैं तो सर झुकाते अपने आप अहंकार विगलित होता है, और विगलित होते अंतःकरण निर्मल होता है, और अंतःकरण के निर्मल होते ही फिर जितने भी सद्गुण है वे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि उपनिषद कहती है आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे स्वरग्रंथिनाम भी प्रमोक्ष। यदि हम अपने जीवन के आहार व्यवहार सुधार लें, आहार का तात्पर्य है आहरियते अनेनेति आहार, जो इंद्रियों से विषयों का सेवन इसका नाम आहार है, जैसे आंख का भोजन है रूप, कान का है शब्दों को सुनना, पैर का है गमनागमन, हाथ का है लेन देन, जीव का है बोलना।
तो जो आंख से हम देखें वह क्या सोचे, सर्वत्र चैतन्य है, परमात्मा की भावना करें। और वास्तव में संसार भावना पर ही निर्भर है। ब्रह्मा जी ने एक पिंड बनाया, इस पिंड पर हमने भावना कर लिया, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, है एक पिंड। हाल मास चाम का 3.5 हाथ का एक पिंड है, उसी पिंड के ऊपर सारी कल्पनाएं हैं, सारा विवर्त है। विवर्त मतलब आरोप है। किसी ने कहा कि देखो ये तो मेरा पुत्र है, दूसरे ने कहा कि पुत्र नहीं ये मेरा भतीजा है, तीसरे ने कहा भतीजा नहीं ये मेरा भांजा है, चौथे ने कहा भांजा नहीं ये मेरा दोस्त है, पांचवे ने कहा बिल्कुल नहीं ये मेरा दुश्मन है। बताओ क्या है वो दोस्त है कि दुश्मन है? कि केवल भावनाओं से हम वैसा मान करके तमाम व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति दोस्त मानेगा उसे बड़ी प्रसन्नता होगी देख करके, और दुश्मन मानने वाला देखेगा दूर से आ रहा है तो रास्ता काट लेगा, जैसे चलो रास्ता अलग नाप लेगा। तो

0: ब्रह्मी है। वाणी से बोलना हो तो हमेशा भगवान के नाम को उच्चारण करे, कान से सुनना ही हो, सुनना मजबूरी हो तो हमेशा जो है कथा श्रवण करे। ये जो है आहार की शुद्धि है। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण के निर्मल होते ही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, और स्वरूप की अभिव्यक्ति का मतलब कि हम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। अब शेष कल विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय

अरक प्रभु जटी, इंटरेस्टिंग नेम. जटी मीन्स ही हैज द वंडरफुल मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर. महादेवा इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग द मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर. विद दिस ओनली ही इज डिस्क्राइब्ड एज कपरधी. द वर्ड कपरधी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइव टाइम्स इट कम्स इन रुद्रम. विज्यम दनु कपर्दिनो विशल्योपानवागुम उत नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः कपर्दिने च पुलस्त.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: இதர் ஆப்னே அனுமான் கியா, அக்னி கா நிச்சய கியா, ஔர் அக்னி பிரயோஜன சித்த கர்னே கே லியே ஜப் ஆப் அக்னி கே பாஸ் பஹுஞ்சே தோ அக்னி பிரத்யக்ஷ ஹோ கயா. வஹாம் கேவல் அக்னி பிரத்யக்ஷ ஹுவா ஹை, தோ அனுமான் ஔர் அக்னி பிரத்யக்ஷ தோனோ கே பீச் மே யே பிரத்யவிஜ்ஞா யே காம் கர் ரஹி ஹை கி ஜிஸ் அனுமான் சே மைனே அக்னி கா நிச்சய கியா தா வஹி அக்னி யா ஹை. யே கௌன் கரா ரஹா ஹை? அனுமான் ஔர் பிரத்யக்ஷ கே பீச் மே சமன்வய கௌன் கரா ரஹா ஹை? பிரத்யவிஜ்ஞா. யே பிரத்யவிஜ்ஞா கா ஸ்வரூப் ஆப்கோ சமஜ்னா பஹுத் ஜரூரி ஹை. சாயத் முஜே லக்தா ஹை இத்னே டீடெயல் சே யே பிரத்யவிஜ்ஞான் கோ ஆப்னே பஹலே நஹி சம்ஜா ஹோ. வஹி பாத் போல்தே ஹை.
3: भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य साम्प्रतं.
2: प्रतिविज्ञा का लक्षण.
3: भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य साम्प्रतं स्वयं इत्यनुसंधानं प्रत्यभिज्ञानमुच्यते.
2: सुरेश्वराचार्य जी ने मूल श्लोक के नहीं, इसकी व्याख्या में सुरेश्वराचार्य जी ने प्रत्यभिज्ञान का लक्षण बनाया. भातस्य कस्यचित् पूर्वं, कोई पदार्थ पहले किसी देश किसी काल में प्रत्यक्ष देखा था, उसी पदार्थ को किसी अन्य काल में और अन्य देश में देखा, अन्य काल और अन्य देश में देखा, और उस समय यह निश्चय हुआ कि उस देश उस काल में मैंने जो देखा था यह वही इस देश और इस काल में दिखता हुआ ये पदार्थ है. तो उस देश उस काल में देखे हुए प्रत्यक्ष देखे हुए वस्तु का इस देश इस काल में प्रत्यक्ष देखे हुए वस्तु के बीच में एक रूपता सिद्ध करने के लिए प्रत्यविज्ञान काम कर रही है, उसी को प्रत्यविज्ञान कहते हैं. मान लो आप आम के पेड़ को बंबई में, आपके घर के आगे कोई पेड़ था और पूछा आपने कि ये क्या है, इतना बड़ा क्या है, तो आपके पिताजी ने समझाया आपको या आपको समझाने वाले ने कहा कि इसको आम का पेड़ कहते हैं. तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दिन दिन देखा आपने, क्योंकि घर के आगे खड़ा था, तो उसके पत्ते को आपने ध्यान से देखा था, उसके पेड़ को ध्यान से देखा था, उसके शाखा को, उसके पेड़ के छिलकों को, उसके ढांचे को अच्छी तरह देखा था, पक्का हो गया था कि ये आम का पेड़ है. अब आप किसी साल दो चार वर्ष के बाद आप चले गए दूसरे गांव में, दूसरे गांव में अपने मित्र के यहां या अपने किसी रिश्तेदारों के यहां चले गए आप, वहां पर भी घर के आगे वो पेड़ खड़ा था, वो पेड़ प्रत्यक्ष हो गया, इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो गया. अब वहां आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह पेड़ किसका है. बात समझ गए? आप स्वयं निश्चय कर लोगे कि यह पेड़ आम का है. तो क्या प्रत्यक्ष से कर लिया? प्रत्यक्ष से तो घर के समय में भी वो आम का पेड़ प्रत्यक्ष दिख रहा था, लेकिन निश्चय नहीं हो रहा था. आपने पूछा, बताने वाले ने आप तो ने कह दिया कि यह आम का पेड़ है, उस पर आपको निश्चय हुआ और जाकर आपने वहां देखा, देखते ही आपने निश्चय कर लिया कि आम का पेड़ है. दूसरे ने पूछा कि ये क्या किसका पेड़ है, बोले आम का पेड़ है. तो तुम कैसे कह रहे हो कि आम का पेड़ है? बोले मेरे घर के आगे भी ऐसे पेड़ है, उसको मेरे पिताजी ने आम कहा था, वो पक्का है, वैसा ही ये है. ये दोनों पेड़ के बीच में एकता सिद्ध किया किसने? प्रत्यविज्ञा ने. ये हर जगह प्रत्यविज्ञा की आवश्यकता पड़ती है. अनुमान से भी प्रत्यविज्ञा, उपमान से भी प्रत्यविज्ञा. गो सदृश गवया, उपमान. उपमा क्या है? गो सदृश गवया. गवय के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो यहां गुरु ने लक्षण बनाया कि जो गाय है उसकी तरह गवय होता है, तो गाय यहां प्रत्यक्ष हो गया, देख लिया आपने। गुरु ने कहा कि इसी का नाम गाय है, ध्यान से देख लेना तुम। उसने एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा, गाय का संस्कार उसके दिमाग में पड़ गया। बात समझ गया ना, गाय का संस्कार पक्का हो गया कि ये गाय है। अब आपको संशय नहीं होगा कि ये पशु क्या है, पक्का हो गया गाय है। अब लक्षण बताया था उपमा का, गो सदृश, गाय जैसा ही होता है और चले गए कहीं जंगलों में, गिर के जंगल में चले गया हो, हाँ कहीं उधर चले गए, कहीं और जगह चले गए, तब वहां अचानक एक पशु दिखाई पड़ा, तो आपको क्या हुआ, स्मरण हुआ आया। किसका? उपमा का स्मरण हुआ आया, उस लक्षण का स्मरण हुआ है, गो सदृश गवय, गाय जैसा ही होता है। तो गाय का जो स्मृति आपके दिमाग में थी वह वहां जग गई और आपने निश्चय कर लिया कि यह गवय है, नील गाय है। इसमें भी व्यक्ति स्मरण है और ये व्यक्ति मन, इसमें भी जो स्मृति है, उपमा स्मृति है, सादृश्य स्मृति है, इसमें भी प्रतिविज्ञा काम कर रही है। तो हर प्रमाण में प्रतिविज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य साम्प्रतं स्वयं इत्यनुसंधानं प्रत्यविज्ञानमुच्यते। तद्देश कालाकारादिन्

दूसरी बात, प्रतिविज्ञा कहां काम करती है, सो अयम तद्देश तत्काल तद आकार। ये तीन चीज है। कोई देश, किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, तत्काल माने किसी भी समय में, और तद आकारादिन, उसके आकार, उसके नाम, मोटा पतला, काला गोरा, सीधा टेढ़ा इत्यादि आकार आदि। ये सब आकार क्या है? आनुषंगिक हैं। दो स्वरूप होते हैं पदार्थों के, पदार्थों को जानने के दो स्वरूप होते हैं। एक स्वरूपभूत लक्षण है, दूसरा आनुषंगिक लक्षण है। और इन आनुषंगिक को ही यहां तटस्थ करके उपनिषद ने कई जगह कहा है, ये आनुषंगिक है। आप लोगों ने कई बार सुना है ना, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण दुष्टा, दूसरा तटस्थ लक्षण। ये जो तटस्थ लक्षण है वो आनुषंगिक है। स्वरूप लक्षण आनुषंगिक नहीं होता, तटस्थ लक्षण आनुषंगिक है। आनुषंगिक माने किसी संबंध से वह लक्षण उसमें आ गया है, बात समझिए ना। और आनुषंगिक जो लक्षण होता है वह नित्य नहीं होता है। हां, आनुषंगिक जो लक्षण है वह नित्य नहीं होता है, क्योंकि निमित्त से आया हुआ लक्षण होने के कारण वह आनुषंगिक है। लेकिन स्वरूप लक्षण नित्य होता है, आनुषंगिक लक्षण नित्य नहीं होते। तो कोई आनुषंगिक जो लक्षण थे, उस लक्षण में आपने उस वस्तु को जाना, उन लक्षणों से आपने उस वस्तु को जाना। जैसे कि लोग कहते हैं कहीं चले गए, देवदत्त को मिलना था, नया गांव में चले गए, पूछा कि देवदत्त कहां रहते हैं, बोले फलानी जगह रहते हैं। तो देवदत्त का घर कौन सा है, बोले वो जो कौवा बैठा है ना, वो देखो, वो जो कौवा छत में, जो कौवा काला बैठा है ना, वो देवदत्त का घर है। आपको ज्ञान हो गया कि नहीं देवदत्त का घर का है? ज्ञान हो गया ना, हाँ, यही देवदत्त का घर है। और जब तक देवदत्त के घर में पहुंचे तो कौवा उड़ के चला गया। और कौवे के चलते आपको देवदत्त का घर का ज्ञान हुआ था। अब उस देवदत्त के घर वहां पहुंचे तो उड़ के चला गया, अब तो लक्षण तो नहीं रहा ना, तो ये क्या हुआ? आनुषंगिक लक्षण। कौवा बैठा हुआ जो घर है वो देवदत्त का है, ये आनुषंगिक है। अब क्या हुआ? तो आनुषंगिक जो था वो चला गया, तो भी घर का ज्ञान आपको यथावत रहा। ये वही घर है जिस घर में कौवा बैठा था। क्या हुआ? कौवे के जाने के बाद भी आपको देवदत्त का घर का निश्चय हो गया। आप कैसे कह रहे हो कि ये घर देवदत्त का है? बोले बताने वाले ने कहा था वो जो कौवा बैठा है ना, वो देवदत्त का घर है। बोले दिखाओ कौवा कहां बैठा है। कौवा तो उड़ गया, अब क्या करोगे? कैसे सिद्ध करोगे वो घर देवदत्त का है? आप फंस गए कि नहीं, बोलो है? मूर्ख हो जाएंगे कि नहीं? आप पूछा आपने किसी नए व्यक्ति से, आपको नए जगह गए हैं, और नए व्यक्ति से पूछा मुझे देवदत्त के घर जाना है, देवदत्त का घर कौन सा है? बताने वाले ने बता दिया वो जो कौवा बैठा है वो देवदत्त का घर है। आपको निश्चय हो गया कि ये घर देवदत्त का है, पक्का हो गया। और जब तक घर वहां पहुंचे कौवा उड़ के चला गया। अब आपने देवदत्त का घर यह करके कहा, पूछने वाले दूसरा व्यक्ति वहां बैठा खड़ा था, तुम्हें कैसे पता चला ये देवदत्त का घर है? मैं फिर इस लक्षण को रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, तुम्हें कैसे पता चला कि ये देवदत्त का घर है? बोले बताने वाले ने बताया था। बताने वाले ने क्या बताया था? वो जो कौवा बैठा हुआ है ना, वो देवदत्त का घर है। बोले दिखाओ कौवा कहां है, अब क्या करोगे? तुम मूर्ख हो गए कि नहीं? बताने वाले ने कौवा बैठा हुआ घर देवदत्त का है बताया है,
तो उसको प्रमाणित करने के लिए आपको कौवा बैठा हुआ ही सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं। अरे कौवा तो उड़ के चला गया, अब क्या करोगे? वो आनुषंगिक लक्षण भले ही हट गया हो लेकिन घर वही।

हुआ तो फिर वो घर में चले जाओगे। कोई जाता है उस दूसरे घर में ना? जिस समय कौवे से जो घर का निश्चय हुआ वो घर कौवे के चले जाने पर भी वह निश्चय यथावत रहता है, उसी का नाम प्रतिविज्ञान है, आनुषंगिकान। तद्देशत काल कारा दिन अवधूय, अवधूय माने हट गए, वो देश भी हट गया, वो काल भी चला गया, वो देश भी छूट गया और उस समय का जो आकार प्रकार था वो भी हट गया। हाँ, अवधूय आनुषंगिकान आए हुए जो तटस्थ लक्षण है वो सब अवधूय, वो हट गए चले गए। फिर भी यथा एकम वस्तु अनुसूतम, उन सब के जाने पर भी जो एक निश्चय वस्तु है स्वयं इत्यविधीयते, ये वही घर है, ये जो आपको पक्का कर रहा है इसी का नाम है प्रत्यविज्ञान। अब ये दृष्टांत में जो प्रत्यविज्ञान के अनेक उदाहरण देने के बाद उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि आनुषंगिक का प्रयोजन क्या है, यानी प्रत्यविज्ञान का प्रयोजन क्या है ये बता रहे हैं। मायानुसंग संजात किंचित ज्ञत्वाद्यपोहनात्। तो आपको जानना चाहिए, आप जानना चाह रहे हैं परमात्मा को, सर्वज्ञ को, तो सर्वज्ञ कहां रहता है, सर्वज्ञ कैसा है, सर्वज्ञ कहां है, सर्वज्ञ का लक्षण बताइए। तो बताने वाले ने बता दिया तत्त्वमसि, जिस सर्वज्ञ को तू जानना चाह रहा है, परमात्मा को जानना चाह रहा है, वो तू है। अब देख लो कि मैं अल्पज्ञ हूं, अभी क्या अनुभव हो रहा है, अभी क्या अनुभव हो रहा है, मैं अल्पज्ञ हूं, अल्पशक्ति वाला हूं। और बताने वाले ने क्या बताया, तुम जानना चाह रहे हो किसको, सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला उसको जानना चाह रहे हो। बताने वाले ने बता दिया कि तू है, वही तू है। अब कैसे निश्चय कर लिए, तो बोले आनुषंगिकान, तो ये तुम्हारे स्वरूप में अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता वो क्या है, आनुषंगिक है। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण पक्ष आ रहा है, ये आनुषंगिक है। आनुषंगिक है माने आया हुआ है, औपाधिक है, तुम्हारे स्वरूप में ये नहीं है। अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमत्ता ये तुम्हारे स्वरूप नहीं है, आनुषंगिक स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूपभूत लक्षण नहीं है, आनुषंगिक लक्षण है, आया हुआ लक्षण है, किसी अन्य के संबंध से अन्य के कारण से आया हुआ को आनुषंगिक कहते हैं। जैसे कोयला काला होता है, कोयला कैसा होता है, काला होता है। अब ये जो कोयले की जो कालिमा है ये उसका स्वरूप है, आनुषंगिक नहीं है। बात समझ गए कि नहीं, आनुषंगिक को ही कालांतर और प्रयत्नांतर से हटाया जा सकता है, जो स्वरूप है उसको हटाया नहीं जा सकता। आनुषंगिक को हटाया जा सकता है, आनुषंगिक और स्वरूप में फर्क पड़ता है, आगंतुक लक्षण और स्वरूपभूत लक्षण। कोयले में जो कालापना है वह आगंतुक लक्षण है, नहीं है, वह स्वरूपभूत लक्षण है। और कोयले खानी में जो काम करने वाले व्यक्ति मजदूर हैं, जो सफेद कपड़ा पहनकर कोयले खानी में काम कर रहे थे, तो उसके चलते उनका कपड़ा भी क्या हो गया, काले हो गए। तो उसके कपड़े जो काले हो गए वो आनुषंगिक है। बात समझ गए कि नहीं, आपने जो काला कपड़ा पहन रखा है ना इस समय, इस कपड़े का जो काला रंग है वो आनुषंगिक है। आपने जो सफेद कपड़ा पहन रखा है, ये कपड़े का जो सफेद रंग है वो आनुषंगिक नहीं है। बात स्पष्ट हो गया, क्योंकि कपास जमीन से जब पैदा हुआ था, काला पैदा हुआ था कि सफेद पैदा हुआ था,

0: पक्का काला कपास पैदा नहीं हुआ था। हाँ, अब वो सफेद कपड़े से जो धागे बने थे तो काले थे कि धागे सफेद थे? और सफेद धागे से जो कपड़े बने हैं तो वो सफेद होंगे कि काले होंगे? ये स्वरूप है। सफेद कपड़ा, कपड़े में जो सफेदी है वह स्वरूप भूत लक्षण है, आनुषंगिक नहीं है। कपास जब खेत से पैदा हुआ था सफेद था, उससे जो धागा बना वह सफेद हुआ, उसमें बाद में काला रंग चढ़ा दिया गया तब फिर वह धागा कैसा हुआ? काला हुआ। अब उस काले धागे से जो कपड़ा बन गया, कपड़ा क्या हुआ? काला हो गया। ये कालापना आनुषंगिक है, अन्यत्र के द्वारा अन्य से अन्य में वह जुड़ गया, इसको आनुषंगिक बोलते हैं। और जो आनुषंगिक है उसको निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। समझ गए ना? आपके कपड़े में चढ़ा हुआ जो कालापना है, चाहे कितने ही काला क्यों ना हो, चढ़ाया गया है, इसीलिए इसको हटाना हो तो केमिकल से हटाया जा सकता है। काले रंग को केमिकल डाल दो, हट जाएगा, काला रंग हट जाएगा, धुल जाएगा, काला रंग सब अलग हो जाएगा। लाल रंग था, धो दिया, केमिकल से धो दिया, सफेद हो जाएगा। तो आनुषंगिक आता है और जाता है, आता है और जाता है आनुषंगिक, लेकिन उसके बीच में एक जो स्वरूप है वह न आता है न जाता है। जैसे सुवर्ण स्वरूप है, आभूषण आनुषंगिक है, आभूषण आनुषंगिक है। इसी तरह जीव में अल्पज्ञता, यह आनुषंगिक है। जीव का अपना स्वरूप नहीं है अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता, यह आनुषंगिक है। ईश्वर में जो सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता, यह भी आनुषंगिक है, स्वरूप नहीं है। अब जो आनुषंगिक हैं, जैसे कि कौवा बैठा हुआ घर, यह आनुषंगिक हो गया। घर ये स्वरूप है, कौवा बैठा आनुषंगिक हो गया। कौवा उड़ के चला गया तो भी स्वरूप से घर वही है। इसी तरह वही कल जो तुम सफेद कपड़ा देख रहे थे, वही ये आज काला कपड़ा हो गया। तो सफेद से काला हो गया, सफेद बाधित हो गया, काला प्रत्यक्ष हो गया। और कालांतर में उस काला रंग आपको पसंद नहीं आया तो केमिकल से पूरा का पूरा धो डाल दिया, धोकर फिर उसमें लाल रंग चढ़ा दिया, तब तुमने ये लाल कपड़ा कब कब लिया है? बोले अरे ये तो वही कल का काला था। पर काला कैसे हो गया, आज लाल कैसे हो गया? बोले आनुषंगिक था, वो तो काला चला गया लाल आ गया, और लाल भी चला जाएगा पीला आएगा। ये आने वाले जो लक्षण है ना, उनको आनुषंगिक कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में वही वही वही वही वही वही कपड़ा वही कपड़ा वही कपड़ा वही, ये प्रत्यविज्ञान, ये प्रत्यविज्ञान है। ये प्रत्यविज्ञान ही काले के समय में जो कपड़ा था, काले रंग से युक्त, काला जाने के बाद भी वही कपड़ा, उसके बाद लाल रंग आ गया तो वही कपड़ा, और लाल रंग चला गया पीला आ गया वही कपड़ा। तो वही वही वही, ये प्रत्यविज्ञान का काम है। स्वरूप को यथार्थ रूप में पकड़े रखने वाला जो है वह प्रत्यविज्ञान है। वही बता रहे, मायानुसंग संजात किंचित ज्ञत्वाद्यपोहनात् सर्वज्ञत्वाद् विजाना विज्ञानम प्रत्यविज्ञानमात्मनम्। तो अल्पज्ञता आदि का अपोहन करने के बाद सर्वज्ञता आदि का जो निश्चय है, वही पहले मैं अल्पज्ञानी था, अल्पशक्ति वाला था, वही आज मैं सर्वज्ञ और सर्वशक्ति वाला हो गया। तो यही तो प्रतिविज्ञान है। वही ये कल तक कुछ नहीं था, आज शक्तिशाली हो गया। देखो है, कल कुछ नहीं था, ये कौन पूछता था इसको? है, जो कहते हैं ना, आगे देखो, कोई व्यक्ति था, पहले साधारण व्यक्ति था, घर छोड़ छाड़ के चला गया, काशी गया, खूब वेदांत अध्ययन किया और साधु बन गया, सन्यासी बन गया। सन्यासी बनकर जब वह कथा करने लगा, उसके कथा सुनते थे, बोले ये कौन है, कहां से आया है महात्मा। तो संयोग से उसके बचपन में उसी गांव का व्यक्ति भी कथा सुन रहा था, दो तीन आदमी वहीं बैठ के उसकी कथा सुन रहे थे। तो बोले अरे तुम इसको पहचाने नहीं। बोले क्या है, कौन है ये। बोले ये तो वही है, फलाने का बेटा, वो राम प्रसाद का, वो राम प्रसाद है ना, वो नीचे तुम्हारे घर के उस बस स्टैंड के पास में जिसका घर है, वो राम प्रसाद। बोले हाँ हाँ, उसी का बेटा वो है कृष्ण है, वो तो घर छोड़कर चला गया था बहुत साल पहले। बोले हाँ हाँ चला गया था, ये वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। बोले क्या हुआ फिर, वो तो बड़ा मूर्ख था। बोले हाँ, तो वो मूर्ख तो चला गया, मूर्खता चला गया तो रामकृष्ण का बेटा भी चला गया। मूर्खता जाने पर रामकृष्ण बेटा नहीं गया, अब वही मूर्ख रामकृष्ण का बेटा आज विद्वान होकर, साधु होकर कथा कर रहा है। देख, बोले वो आज इतना विद्वान हो गया, ये वही है। कैसे निश्चय हुआ, प्रत्यभिज्ञान, ये प्रत्यभिज्ञान। तो यही तो जीवात्मा, आश्चर्य लगता है, ये वही मूर्ख जीव है जो रोता फिरता था, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मरने वाला हो गया है, मैं रोगी हो गया, मैं भोगी हो गया, ये रोता फिरता था, वही जीव है। आज कहता है कि सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कहने वाला वही जीव है। बोले हाँ वही जीव है, कल तक जीवोहम कह रहा था, आज शिवोहम किया, वही जीव है। ये जीव कोई दूसरा नहीं है, आत्मा कोई दूसरी नहीं आई है, शिवोहम कहने वाला आत्मा और जीवोहम कहने वाले आत्मा, ये कोई अलग अलग आत्मा नहीं है। पहले जो जीवोहम कह रहा था वही आज शिवोहम कह रहा है, क्योंकि अनु जीवोहम ये आनुषंगिक था, वो चला गया तो फिर शिवोहम, शिवोहम आनुषंगिक कोई नहीं है, वो स्वरूप है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Pugalthunai Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Pugalthunaiyar hai. तमिलनाडु में आधुनिक कुंभकोणम के निकट एक स्थान है श्री विल्लीपुत्तूर। इस स्थल पर शिवाचार्य परंपरा में हुए थे पुगलथुनैयार। इन शिवाचार्यों का काम था अगम विधि के अनुसार मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति का अभिषेक, अर्चना आराधना आदि इत्यादि करना। एक बार तब वह भयंकर दुर्भिक्ष फैल गया, अन्न का दाना तक मिलना कठिन हो गया था। पुगलथुनैयार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। भूख के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, पर उन्होंने भगवान की सेवा में बाधा नहीं आने दी। वे अपनी पूरी शक्ति से उनकी पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन अभिषेक जल से भरे गढ़े को उठाकर शिवलिंग पर उड़ेल रहे थे कि शरीर की दुर्बलता हावी हो गई। वे चक्कर खाकर बेहोश हो गए, पर कलश मूर्ति पर ही डाल दिया। शरीर और मन से स्वस्थ होकर बेहोश पड़े भक्त को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, जब तक अकाल जारी रहेगा हम प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। यह मुद्रा तुम्हें इसी स्थल पर मिलती रहेगी। प्रभु कृपा से उनकी बेहोशी दूर हो गई और स्वप्न के अनुसार प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा मिलने से उनका कष्ट दूर हो गया। शिव मंदिर में प्रायः दूध, दही, चंदन, शहद, पंचामृत आदि विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक करने के बाद मंत्र को शुद्ध जल से पूरित बड़े बड़े कलशों को ऊपर उठाकर अभिषेक करते हैं। भारी बर्तनों, कलशों, घड़ों आदि को उठाने के लिए पुजारियों का शरीर पुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। अकाल में भूखे रहने के कारण पुगलथुनैयार कई दिन निराहार रहे, इसलिए मंत्रपूर्ण जल से भरी कलश को ऊपर उठाकर अभिषेक करते समय भूख और थकान से बेहाल होकर घड़े को शिवलिंग के ऊपर ही ढाल दिया था। दुर्बल शरीर निढाल होकर गिर पड़ा तो प्रभु ने स्वप्न में आकर निष्ठावन भक्त की समस्या का समाधान कर दिया। फिर पुराणम में दो स्थानों पर भगवान द्वारा अपने भक्तों को स्वर्ण मुद्रा देने की घटना का उल्लेख है। दूसरी घटना में तिरुविली मिललई में बड़े अकाल की स्थिति में भगवान शिव तिरुज्ञान समुंदर और तिरुनामकर सूत को प्रतिदिन सोने की मुद्रा जनता में व्याप्त दुर्भिक्ष की पीड़ा को कम करने के लिए देते रहे। इसके तिरुज्ञान समुंदर और सुंदर मूर्ति के लिए भी शिव ने स्वर्ण देने की कृपा की थी। तिरुज्ञान समुंदर को अपने पिता शिवपाद हृदय के यज्ञ के लिए और सुंदर को अपनी पत्नी परवई द्वारा उत्तरा नक्षत्र के अवसर पर दान कर्म के लिए तिरुकुल्लूर में स्वर्ण प्रदान किया गया। वर्तमान काल में जिसे हम अकाल कहते हैं, तो ऐसी स्थिति की संकल्पना करते हैं जिसमें अन्न का पूर्ण अभाव हो जाता है। सेक्युलर जब अकाल का उल्लेख करते हैं तो उसमें खाद्यान्न का सर्वथा अभाव नहीं था। अन्न आदि की कीमत साधारण जन की पहुंच से बाहर हो जाती थी। धान कम होने के कारण बहुत महंगा बिकता था, इसलिए निर्धन लोगों को अन्न दान करने के लिए स्वर्ण मुद्रा का उपयोग क्रय के साधन उपलब्ध करवाने का उपक्रम है। पुगलथुनैयार की इस भक्ति को हम उच्च कोटि का मानते हैं और इन्हें पेरिय पुराण में एक उच्च कोटि के संत या नायनमार में की श्रेणी में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: तब स्वतः वो सरिता फूट पड़ती है, आपके चरणों से फूट पड़ती है, निकल पड़ती है वो सरिता। तो निकलती है तो क्या करती है वो? किल विसरजो दलंती, जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के जो पाप है, किल्बिस पाप, किल्बिस रज, तलंती, सब धो डालती है, जीवन पवित्र हो जाता है। जिसने आपके दिव्य चरित्रों को सुना, जिसने अपने दिव्य चरित्रों का गान किया, आपके चरणों से निकलने वाली जो चरित्र रूपी सरिता है, नदी है, वो जल प्रवाह है, वह किल विसरजो दलंती, जीव के अनेक जन्मों के पापों को धो डालने वाली है। हाँ, भगा के ले जाएगी, कहां ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। धी कुल्याम, फिर कहां जाएगा वो पानी, कहां? बोले सारे दोषों को धोकर नष्ट करते हुए वह धी कुल्या, बुद्धि रूपी कुल्या नाले से है, कुल प्रवाह, धीकुल्या नाला, बुद्धि रूपी नाले से वह बहता हुआ, धीकुल्या शरणिषु पतंती, कहां नीचे आया है हृदय, हरादा हृदय में, वो कान के माध्यम से हृदय के, देखो ये वृत्ति को ही यहां धी कुल्या कहा है, अंतकरण की जो वृत्ति है, परमात्मा के भाव और भक्तियात्मक जो वृत्ति है, वो वृत्ति के माध्यम से परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी सरिता वह प्रवाहित होता हुआ कान से कान के बाद अंदर प्रवेश करके हृदय के रूपी खेत में जाकर भर जाता है। आप लोगों ने देखा हो कहीं बड़ा पानी का सरोवर हो, उस सरोवर के पानी को कोई किसान अपने खेत में लाना चाहता है तो कैसे लाता है? बाल्टी से उठाकर लाता है, है? कैसे लाता है? नाला खोदता है, उस सरिता सरोवर से एक नाला बना के ले आएगा और उस नाले को सरिता से सरोवर से निकालते हुए लाकर अपने खेत के तक ला के छोड़ेगा, तब क्या होगा? उसी नाले के माध्यम से जल प्रवाह सतत बहता हुआ उस किसान के खेत में आ जाता है और वो पानी किस आकार का होता है उसके खेत में आकर, खेत जिस आकार का है उसी आकार में वह परिणत हो जाता है, खेत की आकृति ही जल का आकार बन जाता है। जल यदि चकोर में है, स्क्वायर में है, तो वह माने खेत यदि स्क्वायर में है, क्यारी यदि स्क्वायर में है, तो पानी भी उसी स्क्वायर के शेप में बैठ जाएगा, भर जाएगा। और उधर यदि तीन कोण वाला होगा वह क्यारी प्लॉट, तो पानी भी वहां आएगा तो उसी कोण का हो जाएगा। इसी तरह भगवान शिव के दिव्य चरित्र रूपी जो सरिता है, बहता हुआ धी कुल्या बुद्धि रूपी वृत्ति के माध्यम से हृदय में आकर हृदय के आकार से भर जाएगा, हृदय में भर जाएगा, छलकने लग जाएगा। तो दो काम करता है, एक काम तो किल विसरजो दलंती, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, मेघ जब बरसता है तो वह बरसे हुए मेघ के पानी से सब धूल धुआं सब धू जाता है, है? सब धुल जाता है, खत्म हो जाता है। एक काम तो भगवान शिव की जो भक्ति करते हैं वह शिव से निकलने वाली जो चरित्र दिव्य चरित्र की सरिता, जीव यानी भक्ति करने वाले चरित्र का गान करने वाले भक्त के सारे किल्विस रज को धो डालती है। दूसरा काम, वह इंद्रियों के माध्यम से हृदय रूपी सरोवर में खेत में आकर लबालब भर जाता है। गलन्ति सम्भोत्व चरित सरित किल विसरजो दलन्ति किल विसरजो दलन्ति नाश कर देता धी कुल्या शरणि सुपतन्ति बुद्धि रूपी वृत्ति के माध्यम से पतंती अंदर प्रवेश करता है। ये विजयता का अंतिम में अर्थ होगा। दिशंती संसार तीसरा काम भी वो करता है। तीसरा काम क्या है? दिशंती संसार भ्रमण परितापोपशमनम। अनेक जन्मों से संसार की यात्रा करते करते हम इतनी थक चुके हैं, विश्रांति के लिए हम हजार साधन अपना चुके हैं, संसार यात्रा अनादिकाल से कर रहे हैं, मनुष्य में आकर पैदा होने से थोड़ा विश्रांति मिलेगी, यहां आकर पैदा हुए तो यहां और अशांति बढ़ी। विश्रांति हुई कि अशांति बढ़ी बोलो? मनुष्य होकर पैदा होके आपको विश्रांति मिली कि अशांति बढ़ गई और अशांति? कभी कभी बचपन में ऐसा होता था, अनंत आकाश में जब पक्षी उड़ते थे ना, उन्मत्त होकर उड़ते थे, तो मन में इच्छा होता था, बचपन ही तो है, मन में इच्छा हो जाती थी, जाग जाती थी, आहा क्या उड़ रहे अनंत आकाश में, हम भी यदि पक्षी हो पाए तो हम भी इसी तरह उड़ पाते। लेकिन क्या करें, हमारे यहां पंख नहीं है, हम उड़ नहीं सकते। कभी कभी इच्छा हो जाती थी, वो पक्षी होते तो, क्या गीत ही गाया है ना, पक्षी होते तो जाने दो है? हाँ, अब वो वासना तुमको फिर दूसरे जन्म में पक्षी बना देता है। पक्षी बन गए तो कम से कम मनुष्य थे तो बंबई में एक फ्लैट तो खरीदा था रहने के लिए, अब पक्षी बन गए, ये तो फायदा हुआ कि हापुस आम फोकड़ में खाने को मिले, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, पहुंच गए रत्नागिरी, पेड़ में बैठ गए, आराम से हापुस आम खा के आ गए। लेकिन करें क्या, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, बड़े मुश्किल से एक एक तीन तीन का चुन चुन के लाकर घोंसला बना ली, वो भी एक पवन आ गया, एक झोंके से वो सब गिरा दिया। तब फिर विचार करने लगा, उस समय कौन, पक्षी, मनुष्य होते तो एक फ्लैट खरीदते तो भवन क्या उड़ाएगा उसका है। देख लो, ये जीवात्मा कहीं भी संतुष्ट होता नहीं है, वो उसको देखता है तो वो बड़ा खुशी है, बड़ा प्रसन्न है, हाँ? वो क्या प्रसन्न है, वो दूसरे को देखते हैं तो दूसरे के सुख हमको पहले दिखाई पड़ता है और अपना दुख हमको पहले दिखाई पड़ता है। दो चीज पहले दिखाई पड़ते हैं, अपना दुख पहले दिखाई पड़ता है, सुख नहीं दिखाई पड़ता है अपना, दुख पहले दिखाई पड़ता है और दूसरे का सुख पहले दिखाई पड़ता है, उसका दुख दिखाई नहीं पड़ता है, वो कितना दुखी है ये कोई विचार नहीं करता है। थोड़ा सा हंस रहा है, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा है, थोड़ा गाड़ी में चढ़ रहा है, क्या सुखी है, है? अरे उसके अंदर का दुख तुमको कहां दिखाई पड़ेगा और तुमको अपने। इसीलिए संसार में ये असंतोष जो दृष्टि है, असंतोष की दृष्टि है, वह दूसरे के भाव को अपने अभाव को पहले देखता है, अपने में जो अभाव है ना वही पहले दिखाई पड़ता है असंतोष की दृष्टि से। संतोष की दृष्टि यदि हो आपके पास, पहले आपके पास जो है वो पहले दिखाई पड़ेगा, समझे कि नहीं, और दूसरे के पास जो नहीं है वो पहले दिखाई पड़ेगा। और यदि आपके पास संतोष की दृष्टि नहीं है तो वह दूसरे के पास जो है वो पहले दिखाई पड़ेगा, अपने पास जो नहीं है वो पहले दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखेगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो फिर क्या कर, बोले दूसरे के पास क्यों है। देव जी ये सब दृष्टि का फर्क है, किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, क्या नहीं है, ये दृष्टि का फर्क है। और यदि तुम्हारे पास संतोष की दृष्टि होती तो जो तुम्हारे पास है वो से तुम संतुष्ट हो जाते, फिर कोई किसी से शिकायत न होती। महात्माओं ने कहा इसलिए संतोष की दृष्टि रखो। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में से एक सूत्र ही रचना कर दी है, हे संसार के मनुष्य यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो एक ही काम करो, संतोष को धारण करो। यदि तुम्हारे पास सुख है माने संतोष है तो बैंक में एक पैसा भी न हो तो तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार में संतोषी को दुखी करने का कोई किसी के पास कोई उपाय नहीं है, और संसार में कोई असंतुष्टि व्यक्ति है उसको फिर सुखी करने का फिर किसी के पास कोई उपाय नहीं है। यदि हमारे पास असंतोष है तो हमको सुखी करने का संसार में किसी के पास कोई उपाय नहीं। हमारे एक महात्मा थे, हैं अभी भी, बेचारा उनको भोजन में कभी भी कोई भी रसोईया संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ, भोजन में संतुष्ट नहीं कर सकता। थोड़ा सा नमक तेज हो गया तो मुझे क्या जिंदगी मारना चाहता है तू, ऐसा नमक तेज कर दिया कैसे खाएं भोजन। सब्जी में नमक कम हो गया तो क्या मुझे तू रोगी समझता है, ये तो हॉस्पिटल का बीमार जो रोगी व्यक्ति उसका खाने का भोजन बना दिया, उमाल के रख दिया, न नून है न तेल है। मिर्ची ज्यादा हुआ तो खटपट, मिर्ची कम हुआ तो खटपट, रोटी थोड़ी सी दाग हो गया तो जला दिया, और एक भी दाग नहीं दिखा तो कच्ची है। हे भगवान, कहते हैं उनको कभी किसी कोई भी भोजन कराकर राजी नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होते। उनको खुश करने का कोई उपाय नहीं क्योंकि संतोष नहीं है। तो इसी तरह संसार में सभी लोग दुखी हैं, कभी किसी योनि में जाते कभी किसी योनि में जाते कभी किसी योनि में जाते हैं, लेकिन जहां जाओ वहां कहीं ना कोई ना कोई असंतुष्टि है, और वहां से निकलता है अरे वो तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो उस योनि में जन्म लेते तो अच्छा होता, फिर वहां से गए उस योनि में जन्म लिया फिर वही समस्या, इससे अच्छा तो वो योनि बहुत बढ़िया है, उधर गए। मनुष्य हो गए तो हजार चीज बनाना पड़ता है भोजन में, तब जाकर थोड़ा जिह्वा को संतुष्ट करती है जिह्वा। हाँ, और भैंस हो गए, सूखा घास पात जो कुछ डाल दिया, आंख बंद कर ली, चबा लिया, बैठ गए और आराम से जुगाली लेते रहे, वहीं पिशाब करते रहे, वहीं खाते रहे, वहीं हकते रहे, वहीं मुतने, क्या आनंद है, न नहाने का झंझट न धोने का झंझट, क्या मस्ती है वहां, क्या विचित्र है। और वहां जाओ तो फिर वो दुर्गंधी, मनुष्य कितने स्वच्छ हैं, क्या सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्या सुंदर घर में रहते हैं। जीवात्मा कभी भी कहीं भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने लिख दिया, एक सूत्र ही बनाया मनुष्यों को, हे मनुष्यों तुम यदि सुखी रहना चाहते हो संतोष को अपने हृदय में धारण करो। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, वैभव संपदा संपत्ति और किसी भी वस्तु से जो सुख होगा उससे भी ज्यादा दिव्य सुख अनुत्तम सुख लाभ जिस सुख की कोई वस्तु के साथ तुलना नहीं कर सकती। किससे? संतोष से होने वाले सुख का, किसी संसार के किसी पदार्थ से होने वाले सुख के साथ तुलना नहीं कर सकते। अनुत्तम सुख लाभ, इसीलिए संतोष एव पुरुष से परम निदान। और नीतिकारों ने कहा है सबसे बड़ी संपदा ही संतोष है। जिसके पास संतोष की वृत्ति है उसके पास सब कुछ है, और कुछ न होने पर भी वह परम सुखी है। और जिसके पास संतोष की वृत्ति नहीं है सब कुछ होने पर भी वह दुखी है। इसका मतलब सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको उससे सुख नहीं मिल रहा है। तो बताया, हे शिवा हे शंभु, आपके चरण से निकलने वाली आपके दिव्य चरित्र रूपी सरिता के ये दिव्य एक तो किलविसरज दलंती, अनेक जन्मों के सारे पाप रूपी धूल को वह बगा के नष्ट कर देगी। दूसरा धी कुल्या शरणिषु पतंती, वृत्ति के माध्यम से हृदय रूपी खेत में आकर वो परिपूर्ण होकर रहती है, भर जाती है, हृदय को भर देता है। और तीसरा संसार भ्रमण परिताप उपशमनम दिशंती, अनेक जन्मों की यह संसार यात्रा अनादि अनंत प्रवाह रूप से जन्म और मृत्यु की यात्रा करते करते जो तुम्हें खिन्नता ग्लानी परिताप हुआ है वो सारे परिताप को वह समाप्त कर देता है। वसंती मच्चेतो हृदभु भी शिवानंद लहरी, इस स्तोत्र का जो नामकरण ये द्वितीय श्लोक में हुआ है। ये शिवानंद लहरी मच्चेतो हृदय भूभि वसंती, हृदय रूपी खेत में ये नित्य निवास करे। कौन? एक तो ये यद्वयर्थक है, एक तो आपके चरणों से निकलने वाली सरिता, भक्ति की जो सरिता है, भाव की जो सरिता है, वो मेरे चित्त में भर जावे। जैसे अब बारिश होती है, बादल सब अपने जीवन का न्यूछावर करते हैं, तब बंबई के सरोवर बैतरणा, लोअर बैतरणा, अप्पर बैतरणा, तानसा, भातसा, क्या क्या सरोवर है ना, लबालब भर जाते हैं। बारिश नहीं हुई तो खाली होने लग गए। अब एक हफ्ता पहले पेपर में न्यूज आया था, अब खाली ये सभी बंबई के जो पानी सप्लाई करने वाले सरोवर में खाली एक महीने के लिए पानी बचा है। मैंने पेपर पढ़ा, खाली एक महीने के लिए। अब यदि जल्दी बारिश नहीं हुई तो पानी कटौती शुरू करना पड़ेगा मुश्किल से। हमने पहले, आप लोग तो बंबई बहुत साल से रहते हो, कई बार है ना पानी, बारिश लेट हुई और पानी की कटौती हुई। एक बार तो बंबई खाली करो, जाओ जाओ, आवश्यक व्यक्ति रहो, बाकी सब जाओ, नोटिस आ गया है, बीएमसी की तरफ से नोटिस आ गया। जो जरूर स्कूल के छुट्टी हो गए, स्कूल बंद कर दिया, और जो खास खास व्यक्ति बंबई में रहना जो आवश्यक वही रहे, बाकी सब वृद्ध लोग हरिद्वार जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, है क्योंकि पानी तो है ही नहीं, क्या करोगे, ऐसा नोटिस आ गया था। लेकिन अब कल से जब मानसून खूब हुई, मेघा खूब बरसे, तो अब बंबई वासियों को राहत मिल रही है, अब नोटिस नहीं आएगी बीएमसी की। लेकिन ये भी लगातार एक हफ्ता 15 दिन यदि बारिश हो तब, अब कहीं एक दिन बारिश होकर फिर गायब हो गया एक महीने के लिए, फिर भरोसा नहीं है भाई। शंकराचार्य जी कहते हैं हृदय को परिपूर्ण करने वाला, वो तो आपके चरण से निकलने वाली जो दिव्य चरित्र रूपी जो सरिता है वही हृदय को लबालब भर सकती है। बसंती ही मच्चे तो हृदय भूमि शिवानंद लहरी, शिव आनंद लहरी, ये तीन वाक्य से ये नामकरण हुआ है। शिव वह अस्तित्व है, शिव अस्तित्व है और शिव के साथ शक्ति का संयोग होता है तो शिव प्लस आनंद शिवानंद, लेकिन वह शिवानंद भक्ति शक्ति के संबंध से ही तरंग में परिणत होते हैं। यदि भक्ति और शक्ति का संयोग नहीं हुआ तो वह जो शिवानंद है वह शिव के पास ही रहेगा, वो तरंगायित नहीं होगा, छलकेगा नहीं। इसलिए भक्ति के माध्यम से वो छलक जाता है। इसलिए शिवानंद लहरी ये स्तोत्र मच्चेतो वसंती, ये दिव्य 100 श्लोक वाला ये चरित्र है। शिव के आनंद से भरा हुआ, शिवानंद को प्रदान करने वाला, हमारे चिमन भाई जी के प्रेमपुरी आश्रम के जो पेपर है नवभारत टाइम्स में और पंपलेट और में तो ठीक लिखा है शिवानंद लहरी लिख दिया पत्रिका और में, लेकिन पेपर में क्या लिखा, शिवानंद गिरी जी लहरी लिख दिया है उन्होंने। अच्छा गुजराती पेपर में भी ऐसे लिखा है शिवानंद गिरी जी लहरी लिख दिया है वहां, क्योंकि जो आनंद के साथ जो गिरी पूरी लगने लगता है ना सरनेम, तो वहां शिवानंद आत्मानंद गिरी, आत्मानंद गिरी आत्मा प्लस आनंद प्लस गिरी आत्मानंद गिरी, तो वहां सोचने वाले ने शिवानंद, शिव का आनंद तो आनंद के पीछे गिरी लगता है तो लगा दिया अपनी मर्जी से, तो शिवानंद गिरी जी लहरी ऐसा लिखा है, लेकिन पत्रिका में ठीक है पंपलेट में ठीक है पेपर में ऐसा लिखा है। तो ये शिवानंद लहरी ये स्तोत्र का जो कंठस्थ हृदयस्थ कर लेगा कोई तो उसको हमेशा उसके हृदय में शिव के आनंद का तरंग ही तरंगायित होते रहेंगे। शंकराचार्य जी और आगे कहते हैं त्रयी वेद्यम हृद्यम त्रिपुरहरमाद्यम त्रिनयनम जटाभारोदारम चलदुर्गहारम मृगधरम महादेवं देवं महिषदय भावं पशुपतिं चिदालंबं सांबं शिवमति विडंबं हृदि भजे। त्रयी वेद्यं हे शिव, आपकी जो दिव्य महिमा है चरित्र है वो हम क्या जान सकते हैं, अपरंपार है, अपरंपार आपके दिव्य चरित्र को तो हम क्या जान पाएंगे। आपकी वो दिव्य महिमा तो त्रयी वेद्य है, गीता में श्लोक आया ना, हाँ वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, कौन कह रहा है ये, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य कौन कह रहा है, हैं? अरे भगवान कहो ना, सीधे खत्म हो गया, कृष्ण क्या करते हो, भगवान कह रहे हैं ना? वो शिव भी वही कहते हैं, कृष्ण भी वही कहेंगे, राम भी वही कहेंगे, गणेश भी वही कहेंगे, सूर्य भी, जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या कहेंगे, त्रयी वेद्य है, सभी त्रय वेद्य है, शिव भी त्रयी वेद्य है, कृष्ण भी त्रयी वेद्य है, नाम को क्यों झगड़ा में डालते हो। हम अभी थाईलैंड और म्यांमार की यात्रा में गए थे जनवरी में। बर्मा बोलते हैं ना पहला नाम, अभी म्यांमार कर दिया। थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड का राजधानी, उधर यात्रा में थे। तो वहां एक जिज्ञासु आकर हमसे प्रश्न करने लग गए, महाराज ये कौन से भगवान सबसे बड़े हैं, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन सबसे बड़े हैं, हमसे पूछने लग गए। तो हमने कहा सभी भगवान बड़े हैं। बोले सभी बड़े तो होते नहीं भाई, घर में सभी बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो छोटे भी होते हैं कि नहीं, यहां कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। हमने कहा तुम्हें ये प्रश्न क्यों आया, ये प्रश्न तुमने क्यों की? तो उसने कहा कि क्योंकि महाराज हमारे यहां आते हैं भारत से, हिंदुस्तान से कुछ पंडित लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो वे लोग कहते हैं, कोई कहता है कि राम सबसे बड़े हैं, राम की भक्ति करो, और कोई कहते हैं कि नहीं सबसे बड़े कृष्ण हैं, कृष्ण की भक्ति करो। भागवत का उदाहरण देते हैं, राम आदि जितने भी अलग अलग अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवत में क्या कहा, ये ते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये उदाहरण देते हैं वे लोग। बाकी जितने भी हैं वो परमात्मा के एक एक अंश कला को लेकर भगवान हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण कला से भगवान हुए हैं। तब कृष्ण में 100% भगवत्ता है, राम में कुछ परसेंट भगवत्ता है। व्याख्या करने वाले यही करेंगे भाई, सांप्रदायिक, समझ गए कि नहीं? हाँ, ऐसी व्याख्या कर देते। कहते हैं कि और सब में तो एक एक अंश है और शिव तो पूर्ण, शिव परिपूर्ण, 100% भगवत्ता शिव में है, इसलिए महादेव। और सब में 100% भगवत्ता नहीं है, इसलिए उन लोगों को खाली देव देव देव देव कह दिया और शिव को महादेव कहा, तो सबसे बड़े महादेव। दूसरा आके कहता है सबसे बड़े कृष्ण, कृष्ण भक्ति करो। दूसरा कहता है सबसे बड़े महादेव, शिव भक्ति करो। तीसरा कहता है सबसे बड़े राम, राम भक्ति करो। कुछ कहते हैं नहीं सबसे बड़े तो सभी ने की है गणेश की, सबसे बड़े तो गणेश है, गणेश की भक्ति करो। तो जब इस प्रकार की बात हम सुनते हैं तो हमारे मन में यह शंका होती है कि वास्तव में सबसे बड़े कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, इसलिए हमने पूछा है महाराज। हमने उनको उत्तर दिया, देखो सबसे बड़े परमात्मा हैं। सबसे बड़े कौन है, भगवान है, परमात्मा है न, शिव बड़े हैं न कृष्ण बड़े हैं, न राम बड़े हैं न गणेश बड़े हैं। सबसे बड़े कौन है, तुम परमात्मा की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। नाम पर क्यों आग्रह रखते हो, कृष्ण तो एक नाम है, किसका? कृष्ण तो एक नाम है, किसका? परमात्मा का। शिव तो एक नाम है, किसका? कौन से परमात्मा का? कृष्ण ये नाम है जिस परमात्मा का, उसी परमात्मा का शिव ये दूसरा नाम है। मनुष्यों में भी 2-3 नाम होते हैं कि नहीं है? आप लोगों में भी होता है कि नहीं? एक राशि का नाम जो शास्त्रीय कर्म करने के लिए प्रयोग होता है, जहां ब्राह्मण किसी धार्मिक और शास्त्रीय वैदिक कर्म करने से पहले हाथ में जौ तिल कूस करके संकल्प कराता है, तो उस समय क्या कहता है, अपना अपना नाम लो। उस समय में ख्याल ये रख लेना जो आपके जन्म कुंडली का राशि का नाम है वही नाम लेना होगा। ये बुलाते समय में या स्कूल में लिखते हो टंटू पंटू क्या क्या लिखते हो, उससे संकल्प पूरा नहीं होगा भाई ना। राशि से जन्माक्षर से जुड़ा हुआ जो नाम है उस नाम को संकल्प में प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि राशि का नाम सार्वजनिक नहीं करते, इसलिए बुलाने का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, कुंडली का नाम अलग होता है। एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होंगे, अलग अलग नाम होगा, लेकिन नाम अलग होने पर व्यक्ति अलग नहीं होता। समझे कि नहीं? हम प्रेमपुरी आश्रम में तो बहुत साल से आ रहे, 2500 साल से कथा करने आ रहे हैं। और पहले हम प्रेमपुरी कथा करने आते थे जब ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और पुराने लोगों को अभी भी मालूम होगा उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समय का जो नाम था आत्मा चैतन्य था। बहुत लोग अभी भी आत्मचैतन्य आत्मचैतन बोलते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल सेंटर के हमारे भक्त लोग तो अभी भी आत्मचैतन्य बोलते हैं, क्योंकि वहां हम बहुत पहले से जाते थे। अब वो आत्मचैतन्य की जगह नाम संन्यास लेने के बाद नाम परिवर्तन हो गया तो आत्मानंद जोड़ दिया। तो आत्मचेतन और आत्मानंद कोई आज भी यहां यदि कोई व्यक्ति आवे।
5: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.

शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। स्वनाम धन्य प्रेम पुरी जी महाराज की। विचार चल रहा है श्री महिमन के ऊपर, पहले उच्चारण कर लें। 11 श्लोक है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरम्

0: स्थिरायास्तद्भक्तेस्त्रिपुरहरविष्पूर्जितमिदम्
1: पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव महिमना में अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विचार किया था दसवें श्लोक में सृष्टि का कारणवाद, जो ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास भगवान ने विचार किया है, जन्माद्यस्यतः, जिससे संसार का सृजन, संसार का पालन और संहार हो, वही अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, वही ब्रह्म है, उसी को परमात्मा भगवान नाना नामों से पुकारते हैं। तो वहां पर अनेक प्रकार के मतभेद का उत्थापन किया था, खासकर तीन वहां पर विचार दिया था, आरंभवाद, परिणामवाद, असदवाद और विवर्तवाद। आरंभवाद तो न्याय दर्शन का है, परिणामवाद सांख्य दर्शन का है और क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन का है और वेदांत सिद्धांत विवर्तवाद मानता है। ये तो प्रधान जगत के विषय में विचार करने वाले हैं, पर इसके अतिरिक्त भी और कई हैं। यदि आप प्रारंभ से विचार करें तो सबसे पहले चार्वाक दर्शन आता है, वह है स्वभाववादी। वह केवल चार ही तत्व मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु, और कहता है चार ही तत्वों से संसार उत्पन्न हुआ है, यह स्वाभाविक है। स्वाभाविक ही नदियां प्रवाहित हो रही हैं, स्वभाव से इस एक बीज को धरती में डालने के बाद अंकुरित होकर पौधा होता है, पल्वित पुष्पित होता है, स्वभाव से नष्ट हो जाता है। उसके दृष्टिकोण से शरीर ही आत्मा है और शरीर के संबंधित संसाधन या सुख प्राप्त करना स्वर्ग है और शरीर पात को ही मोक्ष कहता है। चार्वाक दर्शन जिसको हम भौतिकवादी कहते हैं, वे शरीर से भिन्न किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि पान है, पान के पत्ते होते हैं, उसमें चूना कत्था इस सब मिला करके जब चर्वण करते हैं तो लालिमा उत्पन्न होती है। ऐसे ही चार भूतों के, पृथ्वी जल तेज वायु जो चार भूत हैं, इन्हीं का एक विशेष अंश है जिसको हम चैतन्य कहते हैं, इससे भिन्न कोई चैतन्य नामक चीज नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं शराब का। ऐसे शराब जो है किसी चीज को सड़ाकर बनाई जाती है, उसमें मादकता होती है। ऐसे चार भूतों का एक विशेष अंश है, उसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको लोग आत्मा कहा करते हैं और शरीर पार्थी मोक्ष, यह उसका सिद्धांत है। ये तो यहां तक कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े, मरने के बाद न कोई आत्मा है न परमात्मा है, इस स्वभाववादी चार्वाक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जैन दर्शन आता है, वह कहता है कि परमाणु से ही संसार का निर्माण हुआ, परमाणुओं के समुदाय का नाम है ये संसार। उसके दृष्टिकोण से भी ईश्वर की सत्ता अतिरिक्त नहीं है। जैन दर्शन को स्यादवादी दर्शन कहते हैं, हर चीज पर स्यादवाद, मतलब कि अस्ति च नास्ति च अस्ति च नास्ति च कई विकल्प उठाते हैं, इसको सप्तभृंगी नय भी कहा करते हैं। इसके आगे बौद्ध दर्शन आता है, बौद्ध दर्शन ने बड़ा ही विचार किया है, पर बौद्ध दर्शन भी आत्मा के सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं, न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। कहते हैं कि शून्य ही जगत का मूल है, शून्य से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ। जैसे कोई आम का छोटा सा बीज हम धरती में डालते हैं,

दर्शन समानांतर है, बहुत कुछ इनमें मिलता जुलता है। ये दोनों ही दार्शनिक कहते हैं कि परमाणु से संसार का सृजन होता है और नाश होने के बाद भी परमाणु रूप को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में सब परमाणु रूप हो जाएंगे, परमाणु से अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं होती है। न्याय दर्शन में एक यह भी मान्यता है कि परमाणु को ही ईश्वर भी कहते हैं। कुछ एक न्यायिकों का मत है, सबका मत नहीं है। ईश्वर के संकल्प से परमाणुओं से संसार हुआ। इसके बाद आता है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन यह आपका आरंभवादी नहीं है बल्कि परिणामवादी है। जैसे दूध का परिणाम दही है या मिट्टी का परिणाम घट है, वैसे जो हम लोग दूध का परिणाम दही कहते हैं ना, ये लोकप्रवाद है। लोकप्रवाद मतलब किम वदंती चली आ रही है, परंतु परिणाम का लक्षण दूध दही में घटता नहीं। परिणाम उसे कहते हैं जिससे जो चीज बने और बनने के बाद उस रूप में स्थिर रहे और मिटने के बाद तद्भाव को प्राप्त हो जाए, उसको परिणाम कहते हैं। दूध से दही तो बनता है, परंतु दही जब नष्ट होता है तो दूध रूप को प्राप्त नहीं होता है, तो परिणाम का लक्षण कहां घटा। एक लोका प्रवाद है, चला आ रहा है, समझने समझाने की प्रक्रिया है। प्रवास्तव में परिणाम वाद का अधिष्ठान सही जो है आपका मिट्टी है या सोना है। आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, बनाने के बाद मृण्मय घड़ा होता है और फूटने के बाद भी घड़ा मृतिका के भाव को प्राप्त होता है। तो ये जो सांख्य दर्शन ये कहता है कि प्रधान से जगत हुआ, वह भी परमात्मा के सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं। कहते हैं कि जो प्रधान है, जो जड़ है, उसके द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ। प्रधान की परिभाषा है तीनों गुणों के साम्यावस्था को प्रधान कहते हैं, उसे संसार हुआ। इसके आगे मीमांसक आते हैं। मीमांसकों ने भी ईश्वर के सत्ता को नहीं स्वीकारा। ईश्वर के सत्ता को स्वीकारने वाले बहुत कम हैं। न्याय वैशेषिक वेदांती यही और योग भी स्वीकार करता है, चार है। तो मीमांसक कहते हैं कि सत्कर्म करो, बढ़िया कर्म करोगे तो जो है तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, घटिया कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। मतलब कि पश्चिम देश के नास्तिकों से हमारे देश के नास्तिक कुछ बढ़िया है, कम से कम सत्कर्म को मानते हैं। तो मीमांसक कर्म के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानता है कि जीवात्माओं के अपने दृढ़ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसके आगे वेदांत दर्शन है जो विवर्तवाद है। वेदांत कहता है कि उसी चैतन्य का ये संसार विवर्त है। इस प्रकार से दसवें श्लोक में संक्षेप से पूरे दार्शनिकों के विचार को पुष्पदंताचार्य ने रखा था और अंत में बहुत सुंदर बात कही थी। त्वाम स्तुवन न जिहरेमी, मैं इस प्रकार के शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं भटकता नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और आपके प्रसन्न हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दसवें श्लोक में बदलाया। दस, ग्यारह और बारह, इन तीन श्लोकों में दार्शनिक तथ्य को बतलाने के बाद अब एक पौराणिक तथ्य बतला रहे हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में किस प्रकार से लोगों ने भगवान शंकर की उपासना करके अपने इष्ट को प्राप्त किया। सतयुग की घटना दसवें श्लोक में बतलाया कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिर्मय लिंग की स्तुति किया जिससे भगवान ने दर्शन देके दोनों को कृतार्थ किया। वे भी भगवान के यत्ता परिचिति को जानने का बहुत प्रयास किए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान हरि नीचे गए, परंतु दोनों ही भगवान के सीमा को, जिसको हम परिच्छिन्नता कहते हैं, माप कहते हैं,
नहीं जान पा।

0: क्योंकि अनंत है वह तत्व, अनंत अनंत का अर्थ होता है न विद्यते अंत यस्य अनंत, जिसका अंत नहीं। अंत का अर्थ है परिच्छेद। परिच्छेद तीन तरह से होता है, दैशिक, कालिक और वस्तुकृत। जैसे कि हम लोग बंबई में है, कोई बंबई में पैदा हुआ तो वह व्यक्ति बंबई रूपी देश से परिच्छिन्न हो गया, सीमाएं बंद गया, उसको बंबई वाला बोलेंगे। विदेश में जाएगा तो भारतीय बोलेंगे। जीवन भर ये परिच्छेद उसके साथ लगा रहेगा, ये दैशिक परिच्छेद कहलाता है। दूसरा है कालिक, एक काल में वह उत्पन्न हुआ, एक काल में शरीर उसका छूट जाएगा, एक कालकृत परिच्छेद है। तीसरा वस्तुकृत है, उस पिंड को हम मनुष्य बोलेंगे, पशु नहीं बोलते हैं, परंतु जो परमात्मा है उसमें देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद शून्य होने के कारण उसको सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु भी उसको जान नहीं पाए कि इसका अंत क्या है, सीमा क्या है। तो दसवें श्लोक में सत्युग के कहानी को बतलाया। अब इस 11 श्लोक में त्रेता की बात बतला रहे हैं। पहले इस श्लोक का अर्थ कर ले। त्रिपुरहर संबोधन है, श्लोक का अर्थ करना हो तो पहले इसका अन्वय करना पड़ता, अन्वय के बाद में तब जाके पदार्थोक्ति। तो त्रिपुरहर ये संबोधन है, हे त्रिपुरहर। त्रिपुर बोलते हैं ये जो तीन पुर है, तीन पुर मतलब के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों आविद्यक हैं। और जब तक हमारा ये तीनों पुर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कारण बोलते हैं विद्या शरीर को। स्थूल तो आपको दिखाई दे रहा अन्नमय है, अन्न से बढ़ता है, अन्न से घटता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं। और इसका भी कारण है अविद्या शरीर, जिसको हम कहते हैं कामना वासना। इन तीनों शरीर को ज्ञान प्रदान करके नष्ट करने वाले, कल्याण करने वाले हैं, इसलिए त्रिपुरहर कहते हैं। और दूसरा त्रिपुर का अर्थ है जीव, जगत, ईश्वर। जीव और जगत, ईश्वर जो तीन पुर हैं, इन तीनों को ज्ञान से जो नष्ट करने वाले, मिटाने वाले हैं, इसलिए इनको त्रिपुरहर कहते हैं। शिरः पद्म श्रेणी रचिता चरणा भोरुह बले। रावण ने आपको कैसे प्रसन्न किया तो त्रेता की घटना बतला रहे हैं। अपने शिर रूपी कमल को, शिर को भी हम कमल कहते हैं, शिर रूपी कमल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, एक के बाद एक सिर को चढ़ाते गया। इस प्रकार से 9 शिरों को कमल की तरह भगवान के चरणों में रख दिया। स्थिराया तद भक्ते, ऐसा नहीं करना, यह स्थिर भक्ति थी। अपने शिर को बलिदान देना सबसे बड़ी चीज है। तो रावण कितने निष्ठा श्रद्धा किया ऊपर, कुछ ने स्थिरता से बिना किसी चंचलता के अपने शिर को समर्पित किया। त्वद भक्ते है, और आपके भक्ति के कारण इदम विस्फोर्जितम, यह जो है ना पराक्रम, ऐश्वर्य, प्रताप प्राप्त किया। यतः दशास्य त्रिभुवनम, यतः मतलब इस स्थिर भक्ति के कारण से, क्योंकि उपनिषद में आता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी निष्ठा जैसे ईश्वर में है वैसे सद्गुरु में है, उसके लिए ही ये कथित अर्थ, उपनिषद अर्थ, शास्त्रीय अर्थ उसके अज्ञान अंधकार को दूर करके तत्व ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो ये जो रावण है वो अपने श्रद्धा भक्ति से अपने शिर को समर्पित करके दशास्य, दशास्य बोलते हैं दशानन रावण, त्रिपुरहर, त्रिभुवनम मल्ल के तीनों भुवन को, तीनों लोकों को अयत्नात, बिना किसी प्रयास के, अवैरव्यतिकरम, बिना वैर के, बिना संग्राम के, आपाद्य, सबको जो है अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद रणकंडू पर अवसान, फिर भी उसके 20 भुजाओं की जो खुजलाहट है नहीं मिटी। वह हमेशा अपना प्रतिद्वंदी ढूंढता था ताकि किसी से जरा मेरी कुश्ती हो तो जरा मेरी खुजली शांत हो। बाहुन अभृत, इस प्रकार के बाहुओं को उसने धारण किया। इस लीला का उद्देश्य इतना ही है, त्वद भक्ति स्थिराया, मतलब भगवान की स्थिर भक्ति। देखिए शिव महिमन के एक विशेषता है, प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में इस श्लोक का तात्पर्य क्या है उसको बतला देते हैं। अब हर श्लोक में देख सकते हैं, पहले श्लोक में कहा था कि निरपवाद स्तुति, दूसरे में कहा था कि अर्वाचीन जो पद है, जो सगुण साकार भगवान के विग्रह है, उसमें सबकी वाणी सबकी मन लग जाती है। तीसरे में अंतिम चरण में कहा था कि मैं स्तुति कर रहा हूं अपनी वाणी की और बुद्धि की शुद्धि के लिए। नवें श्लोक में बतलाया था कि आपकी स्तुति से किमा अनुवृत्ति न फलती, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। और इस 11 में बतला रहे हैं कि स्थिराया त्वद भक्ते, आपकी स्थिर भक्ति किया जाए तो सब कुछ मिल जाता, जैसे कि रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया बिना किसी संग्राम किए। जब मनुष्य भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं। अक्सर समस्याएं तभी आती जब आप एकाग्र होकर भगवान का भजन करते हैं, उस समय मन में अनेक प्रकार की कामना होती है। जब आप कोई काम करते हैं तब तो मन उसमें लगा होता है, पर जब भगवान का ध्यान करना हो या जप करने लगते हैं, उपासना करते हैं, तो मन में न जाने कैसी कैसी कामना स्फुरित होती है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ये जो कामना है, ये कामना बैठती है सिर पर, ये कामना जो है ना महारानी है, ये छोटी मोटी जगह नीचे नहीं बैठती है, ये सीधा जो है ना, कल विवेक चूड़ामणि प्रसंग आया था बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर में, कि बिल्कुल सिर पर बैठती है। जो सिर हमेशा ऊपर रखता है ना, सबसे पहले उस अभिमानी के सिर पर कामना बैठ जाएगी। जैसे अभिमान हुआ तुरंत कामना बैठ जाती है, और कामना बैठने के बाद भी मनुष्य को नचाती है, अब बंदर की तरह नाचते रहता है। और आप अपने सिर को जैसे रावण ने भगवान संकेत के चरणों में समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया, ऐसे ही समर्पित कर देंगे तो जिस चरण पर भगवान के चरण कमल विराजमान हो जाएंगे, उस जो है ना सिर पर कामना नहीं आ सकती है। कोई मेहमान आपके घर में आए और आने के बाद आप सत्कार ना करो, अपने काम में लगे रहो, बात भी ना करो, एक बार दो बार तीन बार तो आएगा, यदि आप सत्कार नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, तो जीवन भर दोबारा नहीं आएगा। सोचेगा मैं घर में जाता हूं, कोई लोग मुझे पूछते भी नहीं, आदर भी नहीं करते, तो क्यों जाना। ऐसे ही जब कामना आए ना, जब भगवान की भक्ति करे कामना आए, तो आप उस विषय का चिंतन ही न करें। जब कामना रूपी महारानी का, विषय चिंतन रूपी अतिथि का आप आतिथ्य नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, वो बेचारा दो बार तीन बार चार बार आने के बाद आना बंद कर देगा, बोलेगा कि ये तो अपने आप में मशगूल है, हमारा यहां कोई काम नहीं है। तो ये कामना तो ही परेशान करती जब हम उपासना ही नहीं करते हैं। उपासना जब करेंगे तो हमारा चरण जब भगवान के चरणों में झुक जाता है, और इस सिर पर जब भगवान के चरण पड़ते हैं, तो फिर कामना परेशान नहीं करती है। तो स्थिर भक्ति का प्रभाव महिमा बतलाया कि रावण ने किस प्रकार से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित किया था। यहां पर बलि शब्द का प्रयोग किया है, बलि का अर्थ होता है भेंट समर्पण, पर बलि का अर्थ कई जगह लोग जो है पशु बलि भी करते हैं जो अवैदिक है। यहां जो रावण ने भगवान शंकर को 10 शीर चढ़ाया, इसका दार्शनिक तात्पर्य है, मसूदन सरस्वती जिन्होंने किसी महिमा पर बड़ा सुंदर एक टीका लिखी है, वह टीका हरिहर पक्षीय है, मतलब भगवान शंकर का भी वर्णन है और भगवान विष्णु का भी, दोनों देवताओं को लक्ष्य करके मसूदन सरस्वती ने विष्णु पक्षीय और शिव पक्षीय व्याख्यान बड़ा सुंदर लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि जो दस सिर है, ये जो हमारे दस इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ये जीभ है, इतनी दस इंद्रियां हैं, ये दस इंद्रियां हैं, दशास है। आस शब्द का अर्थ होता है मुख। यदि आप व्याकरण से विचार करें ना तो आस शब्द का अर्थ होता है मुख, मतलब जिसके द्वारा आहार ग्रहण किया जाए उसका नाम मुख है। तो जैसे आप मुख से भोजन करते हैं वैसे आंख का भोजन रूप है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है। ये जो दस इंद्रियां, दस इंद्रियों को रावण ने भगवान शंकर के चरणों में तत्परता से समर्पित कर दिया, यही समझो कि दस सिर का ये बलि है, भेंट है, समर्पण है। परंतु रावण ने अपने मन को समर्पित नहीं किया था, रावण ने मन को समर्पित नहीं किया, इसलिए मन में कामना हुई और कामनाओं के कारण से फिर रावण का भगवान राम के द्वारा संहार होता है। तो यहां पर तो केवल इतना ही बताया कि किस प्रकार स्थिर भक्ति से रावण ने त्रेता में भगवान शंकर को प्रसन्न किया। हम लोग भी स्थिर भक्ति कर सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जगत में स्थिर भक्ति करने के लिए तो बहुत से कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी लोभ वृत्ति है। जैसे आप अपने कपड़े को सीने के लिए देते हैं दर्जी को, दर्जी को देते हैं, दर्जी कहता है एक सप्ताह के बाद आना। जब आप एक सप्ताह के बाद जाते हैं तो क्या बोलता है, तीन दिन रोज के बाद आना। तीन रोज के बाद गए तो दरवाजा बंद कहीं और गया, होता है कि नहीं। फिर आप दस रोज के बाद जाओ, बोले क्या करे सर, अमुक काम हो गया था, कर नहीं पाया। यदि आप स्थिर हैं, सावधान हैं ना, सजग हैं, उसने कहा एक हफ्ता, बस दो दिन के बाद ही पहुंच जाओ, पूछो कि भाई तूने जो है कपड़ा काटा कि नहीं काटा, तुरंत उठाए काटना शुरू कर देगा। फिर जो है एक रोज के बाद पहुंच जाओ, बोले कितना काम हुआ, जो सात रोज में होना है पांच रोज में करके दे देगा, क्योंकि आप उसके सर पर स्थिर हो गए, खड़े हो गए ना। ऐसे ही तत्परता होनी चाहिए। जब घर में माताएं भोजन बनाती हैं तो बच्चे पूछते हैं कि मां अभी कितना देर है, तो मां को हर काम छोड़ के पहले भोजन तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बेटा कहता है कि मुझे सात बजे स्कूल जाना है, अभी छह बज रहे, तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यहां पर जो है ना कोई ऐसा डंडा लेके खड़ा हो, जैसे दर्जी के ऊपर या घर में बेटे होते हैं, मां को मजबूरन सात के पहले तैयार करना पड़ता है। पर यहां तो जो भगवान है वो आपके ऊपर डंडे लेके खड़े नहीं है, मनुष्यों ने दे दिया आपको, सौ वर्ष के राजा बना दिया, आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। परंतु ज्ञान विहीन पशु भी समान, आहार निद्रा भयमय थुनंच समानम एतम पशु भी नारायणम। आहार भय निद्रा विषयानंद जैसा मनुष्य को उपलब्ध है वैसा पशु को उपलब्ध है। बस अंतर है केवल विवेक का, पशु के अंदर विवेक नहीं। यदि हमारा जीवन विवेक न हो तो हमारा जीवन भी पशु से बदतर है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि यदि आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, स्थिर भक्ति चाहिए, स्थिर मतलब तत्परता होनी चाहिए। तत्परता बोलते हैं कि ऐसी ललक हो कि हमें मतलब कि उसके बिना चयन न हो। जैसे कि धनार्थी धन को इतना महत्व देता है,
1: शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज अथर्वण वेदा सौनक शाखा कांडम 2 सूक्त 24। थैंक यू।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव कीर्तना। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन इललो सॉन्ग sung by Maharajapuram Sri Vishwanatha Iyer. Thank you. Om Namah Shivaya.

अवन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च नमो नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: இதர் ஆப்னே அனுமான் கியா, அக்னி கா நிச்சய கியா, और अग्नि प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जब आप अग्नि के पास पहुंचे तो अग्नि प्रत्यक्ष हो गया. वहां केवल अग्नि प्रत्यक्ष हुआ है तो अनुमान और अग्नि प्रत्यक्ष दोनों के बीच में ये प्रतिविज्ञा ये काम कर रही है कि जिस अनुमान से मैंने अग्नि का निश्चय किया था वही अग्नि यह है. ये कौन करा रहा है? अनुमान और प्रत्यक्ष के बीच में समन्वय कौन करा रहा है? प्रतिविज्ञा. ये प्रतिविज्ञा का स्वरूप आपको समझना बहुत जरूरी है. शायद मुझे लगता है इतने डिटेल से ये प्रतिविज्ञान को आपने पहले नहीं समझा हो. वही बात बोलते हैं. भातस्य कस्यचित् पूर्वम् भासमानस्य साम्प्रतम्, प्रतिविज्ञा का लक्षण. भातस्य कस्यचित् पूर्वम् भासमानस्य साम्प्रतम् स्वयं इत्यनुसंधानम प्रत्यभिज्ञानमुच्यते. सुरेश्वराचार्य जी ने, मूल श्लोक के नहीं इसकी व्याख्या में सुरेश्वराचार्य जी ने प्रत्यभिज्ञान का लक्षण बनाया. भातस्य कस्यचित् पूर्वम्, कोई पदार्थ पहले किसी देश किसी काल में प्रत्यक्ष देखा था, उसी पदार्थ को किसी अन्य काल में और अन्य देश में देखा, अन्य काल और अन्य देश में देखा, और उस समय यह निश्चय हुआ कि उस देश उस काल में मैंने जो देखा था यह वही इस देश और इस काल में दिखता हुआ यह पदार्थ है. तो उस देश उस काल में देखे हुए प्रत्यक्ष देखे हुए वस्तु का इस देश इस काल में प्रत्यक्ष देखे हुए वस्तु के बीच में एक रूपता सिद्ध करने के लिए प्रत्यभिज्ञान काम कर रही है, उसी को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं. मान लो आप आम के पेड़ को बंबई में, आपके घर के आगे कोई पेड़ था और पूछा आपने कि ये क्या है, इतना बड़ा क्या है, तो आपके पिताजी ने समझाया आपको या आपको समझाने वाले ने कहा कि इसको आम का पेड़ कहते हैं. तो एक बार दो बार तीन बार चार बार दिन दिन देखा आपने, क्योंकि घर के आगे खड़ा था तो उसके पत्ते को आपने ध्यान से देखा था, उसके पेड़ को ध्यान से देखा था, उसके शाखा को, उसके पेड़ के छिलकों को, उसके ढांचे को अच्छी तरह देखा था, पक्का हो गया था कि ये आम का पेड़ है. अब आप किसी साल दो चार वर्ष के बाद आप चले गए दूसरे गांव.

ये आम का पेड़ है उस पर आपको निश्चय हुआ और जाकर आपने वहां देखा, देखते ही आपने निश्चय कर लिया कि आम का पेड़ है। दूसरे ने पूछा कि ये क्या किसका पेड़ है, बोले आम का पेड़ है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि आम का पेड़ है, बोले मेरे घर के आगे भी ऐसे पेड़ है, उसको मेरे पिताजी ने आम कहा था, वो पक्का है, वैसा ही ये है। ये दोनों पेड़ के बीच में एकता सिद्ध किया किसने, प्रत्यभिज्ञा ने। ये हर जगह प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान से भी प्रत्यभिज्ञा, उपमान से भी प्रत्यभिज्ञा। गो सदृश गवया, उपमान। उपमा क्या है? गो सदृश गवया। गवया के बारे में जानने की इच्छा हुई तो यहां गुरु ने लक्षण बनाया कि जो गाय है उसकी तरह गवया होता है, तो गाय यहां प्रत्यक्ष हो गया, देख लिया आपने। गुरु ने कहा कि इसी का नाम गाय है, ध्यान से देख लेना तुम। उसने एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा, गाय का संस्कार उसके दिमाग में पड़ गया। बात समझ गया ना, गाय का संस्कार पक्का हो गया कि ये गाय है। अब आपको संशय नहीं होगा कि ये पशु क्या है, पक्का हो गया गाय है। अब लक्षण बताया था उपमा का, गो सदृश, गाय जैसा ही होता है। और चले गए कहीं जंगलों में, गिर के जंगल में चले गए आप, हाँ कहीं उधर चले गए, कहीं और जगह चले गए, तब वहां अचानक एक पशु दिखाई पड़ा, तो आपको क्या हुआ, स्मरण हुआ आया। किसका? उपमा का स्मरण हुआ आया, उस लक्षण का स्मरण हुआ है, गो सदृश गवया, गाय जैसा ही होता है। तो गाय का जो स्मृति आपके दिमाग में थी वह वहां जग गई और आपने निश्चय कर लिया कि यह गवय है, नील गाय है। इसमें भी व्यक्ति स्मरण है और ये व्यक्ति मन, इसमें भी जो स्मृति है, उपमा स्मृति है, सादृश्य स्मृति है, इसमें भी प्रत्यभिज्ञा काम कर रही है। तो हर प्रमाण में प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य साम्प्रतं स्वयं इत्यनुसंधानं प्रत्यभिज्ञानमुच्यते। तद्देशकालाकारादीन्

दूसरी बात, प्रतिविज्ञा कहां काम करती है, सो अयम तद्देश तत्काल तत् आकार, ये तीन चीज है। कोई देश किसी भी देश में किसी भी स्थान में तत्काल माने किसी भी समय में और तद आकाराधीन, उसके आकार उसके नाम, मोटा पतला काला गोरा सीधा टेढ़ा इत्यादि आकार आदि, ये सब आकार क्या है, आनुषंगिक हैं। दो स्वरूप होते हैं पदार्थों के, पदार्थों को जानने के दो स्वरूप होते हैं, एक स्वरूपभूत लक्षण है दूसरा आनुषंगिक लक्षण है। और इन आनुषंगिक को ही यहां तटस्थ करके उपनिषद ने कई जगह कहा है ये आनुषंगिक है। आप लोगों ने कई बार सुना है ना, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण दुष्टा, दूसरा तटस्थ लक्षण। ये जो तटस्थ लक्षण है वो आनुषंगिक है, स्वरूप लक्षण आनुषंगिक नहीं होता, तटस्थ लक्षण आनुषंगिक है। आनुषंगिक माने किसी संबंध से वह लक्षण उसमें आ गया है, बात समझिए ना। और आनुषंगिक जो लक्षण होता है वह नित्य नहीं होता है, हां आनुषंगिक जो लक्षण है वह नित्य नहीं होता है, क्योंकि निमित्त से आया हुआ लक्षण होने के कारण वह आनुषंगिक है, लेकिन स्वरूप लक्षण नित्य होता है, आनुषंगिक लक्षण नित्य नहीं होते। तो कोई आनुषंगिक जो लक्षण थे उस लक्षण में आपने उस वस्तु को जाना, उन लक्षणों से आपने उस वस्तु को जाना। जैसे कि लोग कहते हैं

0: कहीं चले गए, देवदत्तक को मिलना था, नया गांव में चले गए, पूछा कि देवदत्तक कहां रहते हैं, बोले फलाने जगह रहते हैं। तो देवदत्तक का घर कौन सा है, बोले वो जो कौवा बैठा है ना, वो देखो वो जो कौवा छत में जो कौवा काला बैठा है ना, वो देवदत्तक का घर है। आपको ज्ञान हो गया कि नहीं देवदत्त का घर का है, ज्ञान हो गया ना? हाँ, यही देवदत्त का घर है। और जब तक देवदत्त के घर में पहुंचे तो कौवा उड़ के चला गया। और कौवे के चलते आपको देवदत्त का घर का ज्ञान हुआ था। अब उस देवदत्त के घर वहां पहुंचे तो उड़ के चला गया, अब तो लक्षण तो नहीं रहा ना, तो ये क्या हुआ? आनुषंगिक लक्षण। कौवा बैठा हुआ जो घर है वो देवदत्त का है, ये आनुषंगिक है। अब क्या हुआ? तो आनुषंगिक जो था वो चला गया तो भी घर का ज्ञान आपको यथावत रहा। ये वही घर है जिस घर में कौवा बैठा था। क्या हुआ? कौवे के जाने के बाद भी आपको देवदत्त का घर का निश्चय हो गया। आप कैसे कह रहे हो कि यह घर देवदत्त का है? बोले बताने वाले ने कहा था वो जो कौवा बैठा है ना वो देवदत्त का घर है। बोले दिखाओ कौवा कहां बैठा है। कौवा तो उड़ गया, अब क्या करोगे? कैसे सिद्ध करोगे वो घर देवदत्त का है? आप फंस गए कि नहीं बोलो है? मूर्ख हो जाएंगे कि नहीं? आप पूछा आपने किसी नए व्यक्ति से, आपको नए जगह गए हैं और नए व्यक्ति से पूछा मुझे देवदत्त के घर जाना है, देवदत्त का घर कौन सा है? बताने वाले ने बता दिया वो जो कौवा बैठा है वो देवदत्त का घर है। आपको निश्चय हो गया कि ये घर देवदत्त का है, पक्का हो गया। और जब तक घर वहां पहुंचे कौवा उड़ के चला गया। अब आपने देवदत्त का घर ये है करके कहा, पूछने वाले दूसरा व्यक्ति वहां बैठा खड़ा था, तुम्हें कैसे पता चला ये देवदत्त का घर है? मैं फिर इस लक्षण को रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, तुम्हें कैसे पता चला कि ये देवदत्त का घर है? बोले बताने वाले ने बताया था। बताने वाले ने क्या बताया था? वो जो कौवा बैठा हुआ है ना वो देवदत्त का घर है। बोले दिखाओ कौवा कहां है, अब क्या करोगे? तुम मूर्ख हो गए कि नहीं? बताने वाले ने कौवा बैठा हुआ घर देवदत्त का है बताया है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए आपको कौवा बैठा हुआ ही सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं? अरे कौवा तो उड़ के चला गया, अब क्या करोगे? वो आनुषंगिक लक्षण भले ही हट गया हो लेकिन घर वही है। कौवा भले ही उड़ के चला गया हो, एक समय में ये कौवा बैठा था, अब कौवा उड़ के चला गया, लेकिन घर वही है। घर के बारे में आपको शंका संशय नहीं है, पक्का है। ये प्रत्यविज्ञान ही आपको आपकी इज्जत बचा के रखता है, नहीं तो आप मूर्ख हो जाएंगे। यदि प्रत्यविज्ञान न होती तो घर में नजदीक पहुंचते वो उड़ गया कौवा, तो फिर घर छूट गया है, घर छूट गया, तब तो यही घर है। ये निश्चय करने के लिए कौवा होना चाहिए। अब वही कौवा को ही आप लेके चलोगे तो उसमें वो घर इस छत में से उड़कर इसमें आ गया कौवा, तो फिर वो घर में चले जाओगे। कोई जाता है उस दूसरे घर में ना? जिस समय कौवे से जो घर का निश्चय हुआ वो घर कौवे के चले जाने पर भी वह निश्चय यथावत रहता है, उसी का नाम प्रतिविज्ञान है, आनुषंगिकान। तद्देश काल कारादिन अवधूय, अवधूय माने हट गए। वो देश भी हट गया, वो काल भी चला गया, वो देश भी छूट गया, और उस समय का जो आकार प्रकार था वो भी हट गया। हाँ, अवधूय आनुषंगिकान आए हुए जो तटस्थ लक्षण है वो सब अवधूय, वो हट गए, चले गए। फिर भी यथा एकम वस्तु अनुस्वीतम, उन सब के जाने पर भी जो एक निश्चय वस्तु है स्वयं इत्यविधीयते, ये वही घर है। ये जो आपको पक्का कर रहा है इसी का नाम है प्रत्यविज्ञान। अब ये दृष्टांत में जो प्रत्यविज्ञान के अनेक उदाहरण देने के बाद उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि आनुषंगिका प्रयोजन क्या है, यानी प्रत्यभिज्ञान का प्रयोजन क्या है ये बता रहे हैं। मायानुसंग संजात किंचित ज्ञात्वाद्यपोहनात्। तो आपको जानना चाहिए, आप जानना चाह रहे हैं परमात्मा को, सर्वज्ञ को। तो सर्वज्ञ कहां रहता है, सर्वज्ञ कैसा है, सर्वज्ञ कहां है, सर्वज्ञ का लक्षण बताइए। तो बताने वाले ने बता दिया, तत्त्वमसि। जिस सर्वज्ञ को तू जानना चाह रहा है, परमात्मा को जानना चाह रहा है, वो तू है। अब देख लो कि मैं अल्पज्ञ हूं, अभी क्या अनुभव हो रहा है, अभी क्या अनुभव हो रहा है, मैं अल्पज्ञ हूं, अल्पशक्ति वाला हूं। और बताने वाले ने क्या बताया, तुम जानना चाह रहे हो किसको, सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला, उसको जानना चाह रहे हो। बताने वाले ने बता दिया कि तू है, वही तू है। अब कैसे निश्चय कर लिए, तो बोले आनुसंगिकान, तो ये तुम्हारे स्वरूप में अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता वो क्या है, आनुसंगिक है। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण पक्ष आ रहा है, ये आनुसंगिक है। आनुसंगिक है माने आया हुआ है, औपाधिक है, तुम्हारे स्वरूप में ये नहीं है। अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमत्ता ये तुम्हारे स्वरूप नहीं है, आनुसंगिक स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूपभूत लक्षण नहीं है, आनुसंगिक लक्षण है, आया हुआ लक्षण है, किसी अन्य के संबंध से, अन्य के कारण से आया हुआ को आनुसंगिक कहते हैं। जैसे कोयला काला होता है, कोयला कैसा होता है, काला होता है। अब ये जो कोयले की जो कालिमा है, ये उसका स्वरूप है, आनुसंगिक नहीं है। बात समझ गए कि नहीं, आनुसंगिक को ही कालांतर और प्रयत्नांतर से हटाया जा सकता है, जो स्वरूप है उसको हटाया नहीं जा सकता। आनुसंगिक को हटाया जा सकता है, आनुसंगिक और स्वरूप में फर्क पड़ता है, आगंतुक लक्षण और स्वरूपभूत लक्षण। कोयले में जो कालापना है वह आगंतुक लक्षण है, नहीं है, वह स्वरूपभूत लक्षण है। और कोयले खानी में जो काम करने वाले व्यक्ति मजदूर हैं, जो सफेद कपड़ा पहनकर कोयले खानी में काम कर रहे थे, तो उसके चलते उनका कपड़ा भी क्या हो गया, काले हो गए। तो उसके कपड़े जो काले हो गए वो आनुसंगिक है। बात समझ गए कि नहीं, आपने जो काला कपड़ा पहन रखा है ना इस समय, इस कपड़े का जो काला रंग है वो आनुसंगिक है। आपने जो सफेद कपड़ा पहन रखा है, ये कपड़े का जो सफेद रंग है वो आनुसंगिक नहीं है। बात स्पष्ट हो गया, क्योंकि कपास जमीन से जब पैदा हुआ था, काला पैदा हुआ था कि सफेद पैदा हुआ था, है पक्का काला कपास पैदा नहीं हुआ था। हा, अब वो सफेद कपड़े से जो धागे बने थे तो काले थे कि सफेद थे, और सफेद धागे से जो कपड़े बने हैं तो वो सफेद होंगे कि काले होंगे, ये स्वरूप है। सफेद कपड़ा, कपड़े में जो सफेदी है वह स्वरूपभूत लक्षण है, आनुसंगिक नहीं है। कपास जब खेत से पैदा हुआ था सफेद था, उससे जो धागा बना वह सफेद हुआ, उसमें बाद में काला रंग चढ़ा दिया गया तब फिर वह धागा कैसा हुआ, काला हुआ। अब उस काले धागे से जो कपड़ा बन गया, कपड़ा क्या हुआ, काला हो गया। ये कालापना आनुसंगिक है, अन्यत्र के द्वारा अन्य से अन्य में वह जुड़ गया, इसको आनुसंगिक बोलते हैं। और जो आनुसंगिक है उसको निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। समझ गए ना, आपके कपड़े में चढ़ा हुआ जो कालापना है, चाहे कितने ही काला क्यों ना हो, चढ़ाया गया है। इसीलिए इसको हटाना हो तो केमिकल से हटाया जा सकता है। काले रंग को केमिकल डाल दो, हट जाएगा, काला रंग हल जाएगा, धुल जाएगा, काला रंग सब अलग हो जाएगा। लाल रंग था, धो दिया, केमिकल से धो दिया, सफेद हो जाएगा। तो आनुषंगिक आता है और जाता है, आता है और जाता है आनुषंगिक, लेकिन उसके बीच में एक जो स्वरूप है वह न आता है न जाता है। जैसे सुवर्ण स्वरूप है, आभूषण आनुषंगिक है, आभूषण आनुषंगिक है। इसी तरह जीव में अल्पज्ञता यह आनुषंगिक है, जीव का अपना स्वरूप नहीं है अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता यह आनुषंगिक है। ईश्वर में जो सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता यह भी आनुषंगिक है, स्वरूप नहीं है। अब जो आनुषंगिक हैं, जैसे कि कौवा बैठा हुआ घर, यह आनुषंगिक हो गया। घर यह स्वरूप है, कौवा बैठा आनुषंगिक हो गया। कौवा उड़ के चला गया तो भी स्वरूप से घर वही है। इसी तरह वही कल जो तुम सफेद कपड़ा देख रहे थे, वही ये आज काला कपड़ा हो गया। तो सफेद से काला हो गया, सफेद बाधित हो गया, काला प्रत्यक्ष हो गया। और कालांतर में उस काला रंग आपको पसंद नहीं आया तो केमिकल से पूरा का पूरा धो डाल दिया, धोकर फिर उसमें लाल रंग चढ़ा दिया। तब तुमने ये लाल कपड़ा कब कब लिया है? बोले अरे ये तो वही कल का काला था। पर काला कैसे हो गया, आज लाल कैसे हो गया? बोले आनुषंगिक था, वो तो काला चला गया लाल आ गया, और लाल भी चला जाएगा पीला आएगा। ये आने वाले जो लक्षण है ना, उनको आनुषंगिक कहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में वही वही वही वही वही वही कपड़ा वही कपड़ा वही कपड़ा वही, ये प्रत्यविज्ञान, ये प्रत्यविज्ञान है। ये प्रत्यविज्ञान ही काले के समय में जो कपड़ा था काले रंग से युक्त, काला जाने के बाद भी वही कपड़ा, उसके बाद लाल रंग आ गया तो वही कपड़ा, और लाल रंग चला गया पीला आ गया वही कपड़ा। तो वही वही वही ये प्रतिविज्ञा का काम है। स्वरूप को यथार्थ रूप में पकड़े रखने वाला जो है वह प्रतिविज्ञान है। वही बता रहे मायानुसंग मायानुसंग संजात किंचित ज्ञत्वाद्यपोहनात् सर्वज्ञत्वाद् विजाना विज्ञानम प्रत्यविज्ञानमात्मनम्। तो अल्पज्ञता आदि का अपोहन करने के बाद सर्वज्ञता आदि का जो निश्चय है, वही पहले मैं अल्पज्ञानी था अल्पशक्ति वाला था, वही आज मैं सर्वज्ञ और सर्वशक्ति वाला हो गया। तो यही तो प्रतिविज्ञान है। वही ये कल तक कुछ नहीं था, आज शक्तिशाली हो गया। देखो है, कल कुछ नहीं था, ये कौन पूछता था इसको? है जो कहते हैं ना, आज ये देखो कोई व्यक्ति था, पहले साधारण व्यक्ति था, घर छोड़ छाड़ के चला गया, काशी गया, खूब वेदांत अध्ययन किया और साधु बन गया, सन्यासी बन गया। सन्यासी बनकर जब वह कथा करने लगा, उसके कथा सुनते थे तो बोले ये कौन है, कहां से आया है महात्मा? तो संयोग से उसके बचपन में उसी गांव का व्यक्ति भी कथा सुन रहा था, दो तीन आदमी वहीं बैठ के उसकी कथा सुन रहे थे। तो बोले अरे तुम इसको पहचाने नहीं? बोले क्या है, कौन है ये? बोले ये तो वही है फलाने का बेटा, वो राम प्रसाद का, वो राम प्रसाद है ना, वो नीचे तुम्हारे घर के उस बस स्टैंड के पास में जिसका घर है वो राम प्रसाद। बोले हां हां, उसी का बेटा वो है कृष्ण है, वो तो घर छोड़कर चला गया था बहुत साल पहले। बोले हां हां चला गया था, ये वही कृष्ण है। है वही कृष्ण है। बोले क्या हुआ फिर, वो तो बड़ा मूर्ख था। बोले हाँ, तो वो मूर्ख तो चला गया, मूर्खता चला गया तो रामकृष्ण का बेटा भी चला गया। मूर्खता जाने पर रामकृष्ण बेटा नहीं गया। अब वही मूर्ख रामकृष्ण का बेटा आज विद्वान होकर साधु होकर कथा कर रहा है। देख लो, बोले वो आज इतना विद्वान हो गया, ये वही है। कैसे निश्चय हुआ? प्रत्यविज्ञान, ये प्रत्यविज्ञान। तो यही तो जीवात्मा है। आश्चर्य लगता है, ये वही मूर्ख जीव है जो रोता फिरता था, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मरने वाला हो गया है, मैं रोगी हो गया, मैं भोगी हो गया, ये रोता फिरता था, वही जीव है। आज कहता है कि सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कहने वाला वही जीव है। बोले हाँ वही जीव है, कल तक जीवोहम कह रहा था, आज शिवोहम किया, वही जीव है। ये जीव कोई दूसरा नहीं है, आत्मा कोई दूसरी नहीं आई है। शिवोहम कहने वाला आत्मा और जीवोहम कहने वाले आत्मा, ये कोई अलग अलग आत्मा नहीं है। पहले जो जीवोहम कह रहा था वही आज शिवोहम कह रहा है, क्योंकि अनु जीवोहम ये आनुषंगिक था, वो चला गया तो फिर शिवोहम, शिवोहम आनुषंगिक कोई नहीं है, वो स्वरूप है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Pugalthunai Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Pugalthunaiyar hai. तमिलनाडु में आधुनिक कुंभकोणम के निकट एक स्थान है श्री विल्लीपुत्तूर। इस स्थल पर शिवाचार्य परंपरा में हुए थे पुगलथुनैयार। इन शिवाचार्यों का काम था अगम विधि के अनुसार मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति का अभिषेक, अर्चन आराधना आदि इत्यादि करना। एक बार तब वह भयंकर दुर्भिक्ष फैल गया, अन्न का दाना तक मिलना कठिन हो गया था। पुगलथुनैयार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। भूख के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, पर उन्होंने भगवान की सेवा में बाधा नहीं आने दी। वे अपनी पूरी शक्ति से उनकी पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन अभिषेक जल से भरे गढ़े को उठाकर शिवलिंग पर उड़ेल रहे थे कि शरीर की दुर्बलता हावी हो गई। वे चक्कर खाकर बेहोश हो गए, पर कलश मूर्ति पर ही डाल दिया। शरीर और मन से स्वस्थ होकर बेहोश पड़े भक्त को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, जब तक अकाल जारी रहेगा हम प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। यह मुद्रा तुम्हें इसी स्थल पर मिलती रहेगी। प्रभु कृपा से उनकी बेहोशी दूर हो गई और स्वप्न के अनुसार प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा मिलने से उनका कष्ट दूर हो गया। शिव मंदिर में प्रायः दूध, दही, चंदन, शहद, पंचामृत आदि विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक करने के बाद मंत्रपूर्त शुद्ध जल से पूरे बड़े बड़े कलशों को ऊपर उठाकर अभिषेक करते हैं। भारी बर्तनों, कलशों, घड़ों आदि को उठाने के लिए पुजारियों का शरीर पुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। अकाल में भूखे रहने के कारण पुगलथुनैयार कई दिन निराहार रहे, इसलिए मंत्रपूत जल से भरी कलश को ऊपर उठाकर अभिषेक करते समय भूख और थकान से बेहाल होकर घड़े को शिवलिंग के ऊपर ही डाल दिया था। दुर्बल शरीर निराल होकर गिर पड़ा तो प्रभु ने स्वप्न में आकर निष्ठावन भक्त की समस्या का समाधान कर दिया। फिर पुराणम में दो स्थानों पर भगवान द्वारा अपने भक्तों को स्वर्ण मुद्रा देने की घटना का उल्लेख है। दूसरी घटना में तिरुविली मिललई में बड़े अकाल की स्थिति में भगवान शिव तिरुज्ञान संबंधर और तिरुनामकर सूत को प्रतिदिन सोने की मुद्रा जनता में व्याप्त दुर्भिक्ष की पीड़ा को कम करने के लिए देते रहे। इसके तिरुज्ञान संबंधर और सुंदर मूर्ति के लिए भी शिव ने स्वर्ण देने की कृपा की थी। तिरुज्ञान संबंधर को अपने पिता शिवपाद हृदय के यज्ञ के लिए और सुंदर को अपनी पत्नी परवई द्वारा उत्तरा नक्षत्र के अवसर पर दान कर्म के लिए तिरुकुल्लूर में स्वर्ण प्रदान किया गया। वर्तमान काल में जिसे हम अकाल कहते हैं, तो ऐसी स्थिति की संकल्पना करते हैं जिसमें अन्न का पूर्ण अभाव हो जाता है। चक्रर जब अकाल का उल्लेख करते हैं तो उसमें खाद्यान्न का सर्वथा अभाव नहीं था। अन्न आदि की कीमत साधारण जन की पहुंच से बाहर हो जाती थी। धान कम होने के कारण बहुत महंगा बिकता था, इसलिए निर्धन लोगों को अन्नदान करने के लिए स्वर्ण मुद्रा का उपयोग क्रय के साधन उपलब्ध करवाने का उपक्रम है। पुगलथुनैयार की इस भक्ति को हम उच्च कोटि का मानते हैं और इन्हें पेरिय पुराणम में एक उच्च कोटि के संत या नायनमार में की श्रेणी में गिना गया है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: तब स्वतः वो सरिता फूट पड़ती है, आपके चरणों से फूट पड़ती है, निकल पड़ती है वो सरिता। तो निकलती है तो क्या करती है वो? किल विसरजो दलंती, जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के जो पाप है, किल्बिस पाप, किल्बिस रज, तलंती, सब धो डालती है, जीवन पवित्र हो जाता है। जिसने आपके दिव्य चरित्रों को सुना, जिसने अपने दिव्य चरित्रों का गान किया, आपके चरणों से निकलने वाली जो चरित्र रूपी सरिता है, नदी है, वो जल प्रवाह है, वह किल्बिसरजो दलंती, जीव के अनेक जन्मों के पापों को धो डालने वाली है। भगा के ले जाएगी, कहां ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। धी कुल्याम, फिर कहां जाएगा वो पानी, कहां? बोले सारे दोषों को धोकर नष्ट करते हुए वह धी कुल्या, बुद्धि रूपी कुल्या नाले से है, कुल प्रवाह, धीकुल्या नाला, बुद्धि रूपी नाले से वह बहता हुआ धीकुल्या शरणिषु पतंती, कहां नीचे आया है हृदय, हृदय में, वो कान के माध्यम से हृदय के, देखो ये वृत्ति को ही यहां धी कुल्या कहा है। अंतकरण की जो वृत्ति है, परमात्मा के भाव और भक्तियात्मक जो वृत्ति है, वो वृत्ति के माध्यम से परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी सरिता वह प्रवाहित तो होता हुआ कान से कान के बाद अंदर प्रवेश करके हृदय के रूपी खेत में जाकर भर जाता है। आप लोगों ने देखा हो कहीं बड़ा पानी का सरोवर हो, उस सरोवर के पानी को कोई किसान अपने खेत में लाना चाहता है तो कैसे लाता है? बाल्टी से उठाकर लाता है, है? कैसे लाता है? नाला खोदता है, उस सरिता सरोवर से एक नाला बना के ले आएगा और उस नाले को सरिता से सरोवर से निकालते हुए लाकर अपने खेत के तक लाके छोड़ेगा, तब क्या होगा? उसी नाले के माध्यम से जल प्रवाह सतत बहता हुआ उस किसान के खेत में आ जाता है और वो पानी किस आकार का होता है उसके खेत में आकर, खेत जिस आकार का है उसी आकार में वह परिणत हो जाता है। खेत की आकृति ही जल का आकार बन जाता है। जल यदि चकोर में है, स्क्वायर में है, तो वह माने खेत यदि स्क्वायर में है, क्यारी यदि स्क्वायर में है, तो पानी भी उसी स्क्वायर की शेप में बैठ जाएगा, भर जाएगा। और उधर यदि तीन कोण वाला होगा वह क्यारी प्लॉट, तो पानी भी वहां आएगा तो उसी कोण का हो जाएगा। इसी तरह भगवान शिव के दिव्य चरित्र रूपी जो सरिता है बहता हुआ धीकुल्या बुद्धि रूपी वृत्ति के माध्यम से हृदय में आकर हृदय के आकार से भर जाएगा, हृदय में भर जाएगा, छलकने लग जाएगा। तो दो काम करता है, एक काम तो किल्बिसरजो दलंती, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, मेघ जब बरसता है तो वह बरसे हुए मेघ के पानी से सब धूल धुआं सब धू जाता है, है? सब धुल जाता है, खत्म हो जाता है। एक काम तो भगवान शिव की जो भक्ति करते हैं वह शिव से निकलने वाली जो चरित्र दिव्य चरित्र की सरिता जीव यानी भक्ति करने वाले चरित्र का गान करने वाले भक्त के सारे किल्बिस रज को धो डालती है। दूसरा काम, वह इंद्रियों के माध्यम से हृदय रूपी सरोवर में खेत में आकर लबालब भर जाता है। गलन्ति शम्भोत्व चरित सरित किल विसरजो दलन्ति किल विसरजो दलन्ति नाश करते थे धी कुल्या सरणि सुपतन्ति बुद्धि रूपी वृत्ति के माध्यम से पतन्ति अंदर प्रवेश करता है। ये विजयता का अंतिम में अर्थ होगा। दिशंति संसार तीसरा काम भी वो करता है। तीसरा काम क्या है? दिशंति संसार भ्रमण परितापोपशमनम। अनेक जन्मों से संसार की यात्रा करते करते हम इतनी थक चुके हैं, विश्रांति के लिए हम हजार साधन अपना चुके हैं, संसार यात्रा अनादिकाल से कर रहे हैं, मनुष्य में आकर पैदा होने से थोड़ा विश्रांति मिलेगी, यहां आकर पैदा हुए तो यहां और अशांति बढ़ी, विश्रांति हुई कि अशांति बढ़ी बोलो है? मनुष्य होकर पैदा होके आपको विश्रांति मिली कि अशांति बढ़ गई और अशांति? कभी कभी बचपन में ऐसा होता था, अनंत आकाश में जब पक्षी उड़ते थे ना, उन्मत्त होकर उड़ते थे, तो मन में इच्छा होता था, बचपन नहीं तो है, मन में इच्छा हो जाती थी, जाग जाती थी, आहा क्या उड़ रहे अनंत आकाश में, हम भी यदि पक्षी हो पाए तो हम भी इसी तरह उड़ पाते। लेकिन क्या करें, हमारे यहां पंख नहीं है, हम उड़ नहीं सकते। कभी कभी इच्छा हो जाती थी, वो पक्षी होते तो क्या, गीत ही गाया है ना, पक्षी होते तो जाने दो है? हाँ, अब वो वासना तुमको फिर दूसरे जन्म में पक्षी बना देता है। पक्षी बन गए तो कम से कम मनुष्य थे तो बंबई में एक फ्लैट तो खरीदा था रहने के लिए, अब पक्षी बन गए, ये तो फायदा हुआ कि हापुस आम फोकड़ में खाने को मिले, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, पहुंच गए रत्नागिरी, पेड़ में बैठ गए, आराम से हापुस आम खा के आ गए। लेकिन करें क्या, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, बड़े मुश्किल से एक एक तीन तीन का चुन चुन के लाकर घोंसला बना ली, वो भी एक पवन आ गया, एक झोंके से वो सब गिरा दिया। तब फिर विचार करने लगा, उस समय कौन, पक्षी, मनुष्य होते तो एक फ्लैट खरीदते तो भवन क्या उड़ाएगा उसका है, देख लो, ये जीवात्मा कहीं भी संतुष्ट होता नहीं है, वो उसको देखता है तो वो बड़ा खुशी है, बड़ा प्रसन्न है, हाँ? वो क्या प्रसन्न है, वो दूसरे को देखते हैं तो दूसरे के सुख हमको पहले दिखाई पड़ता है और अपना दुख हमको पहले दिखाई पड़ता है, दो चीज पहले दिखाई पड़ते हैं, अपना दुख पहले दिखाई पड़ता है, सुख नहीं दिखाई पड़ता है अपना, दुख पहले दिखाई पड़ता है और दूसरे का सुख पहले दिखाई पड़ता है, उसका दुख दिखाई नहीं पड़ता है, वो कितना दुखी है ये कोई विचार नहीं करता, थोड़ा सा हंस रहा है, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा है, थोड़ा गाड़ी में चढ़ रहा है, क्या सुखी है, हैं? अरे उसके अंदर का दुख तुमको कहां दिखाई पड़ेगा और तुमको अपने, इसीलिए संसार में ये असंतोष जो दृष्टि है, असंतोष की दृष्टि है, वह दूसरे के भाव को अपने अभाव को पहले देखता है, अपने में जो अभाव है ना वही पहले दिखाई पड़ता है असंतोष की दृष्टि से। संतोष की दृष्टि यदि हो आपके पास, पहले आपके पास जो है वो पहले दिखाई पड़ेगा, समझे कि नहीं, और दूसरे के पास जो नहीं है वो पहले दिखाई पड़ेगा, और यदि आपके पास संतोष की दृष्टि नहीं है तो वह दूसरे के पास जो है वो पहले दिखाई पड़ेगा, अपने पास जो नहीं है वो पहले दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखेगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो फिर क्या कर, बोले दूसरे के पास क्यों है। देव जी ये सब दृष्टि का फर्क है, किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, क्या नहीं है, ये दृष्टि का फर्क है। और यदि तुम्हारे पास संतोष की दृष्टि होती तो जो तुम्हारे पास है वो उससे तुम संतुष्ट हो जाते, फिर कोई किसी से शिकायत न होती। महात्माओं ने कहा इसलिए संतोष की दृष्टि रखो। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में से एक सूत्र ही रचना कर दी है, हे संसार के मनुष्य यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो एक ही काम करो, संतोष को धारण करो। यदि तुम्हारे पास सुख है मन संतोष है तो बैंक में एक पैसा भी न हो तो तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार में संतोषी को दुखी करने का कोई किसी के पास कोई उपाय नहीं है, और संसार में कोई असंतुष्टि व्यक्ति है उसको फिर सुखी करने का फिर किसी के पास कोई उपाय नहीं है। यदि हमारे पास असंतोष है तो हमको सुखी करने का संसार में किसी के पास कोई उपाय नहीं। हमारे एक महात्मा थे, हैं अभी भी, बेचारा उनको भोजन में कभी भी कोई भी रसोईया संतुष्ट नहीं कर सकता। भोजन में संतुष्ट नहीं कर सकता, थोड़ा सा नमक तेज हो गया तो मुझे क्या जिंदगी मारना चाहता है तू, ऐसा नमक तेज कर दिया कैसे खाएं भोजन। सब्जी में नमक कम हो गया तो क्या मुझे तू रोगी समझता है, ये तो हॉस्पिटल का बीमार जो रोगी व्यक्ति उसका खाने का भोजन बना दिया, उमाल के रख दिया, न नून है न तेल है। मिर्ची ज्यादा हुआ तो खटपट, मिर्ची कम हुआ तो खटपट, रोटी थोड़ी सी दाग हो गया तो जला दिया, और एक भी दाग नहीं दिखा तो कच्ची है। हे भगवान, कहते हैं उनको कभी किसी कोई भी भोजन कराकर राजी नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता। उनको खुश करने का कोई उपाय नहीं क्योंकि संतोष नहीं है। तो इसी तरह संसार में सभी लोग दुखी हैं, कभी किसी योनि में जाते हैं, कभी किसी योनि में जाते हैं, कभी किसी योनि में जाते हैं, लेकिन जहां जाओ वहां कहीं ना कोई असंतुष्टि है, और वहां से निकलता है अरे वो तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो उस योनि में जन्म लेते तो अच्छा होता, फिर वहां से गए उस योनि में जन्म लिया तो फिर वही समस्या, इससे अच्छा तो वो योनि बहुत बढ़िया है, उधर गए मनुष्य हो गए तो हजार चीज बनाना पड़ता है भोजन में, तब जाकर थोड़ा जिह्वा को संतुष्ट करती है जिह्वा। हाँ, और भैंस हो गए, सूखा घास पात जो कुछ डाल दिया, आंख बंद कर ली, चबा लिया, बैठ गए और आराम से जुगाली लेते रहे, वहीं पिशाब करते रहे, वहीं खाते रहे, वहीं हकते रहे, वहीं मुतने, क्या आनंद है, ना नहाने का झंझट ना धोने का झंझट, क्या मस्ती है वहां, क्या विचित्र है। और वहां जाओ तो फिर वो दुर्गंधी, मनुष्य कितने स्वच्छ हैं, क्या सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्या सुंदर घर में रहते हैं। जीवात्मा कभी भी कहीं भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने लिख दिया, एक सूत्र ही बनाया मनुष्यों को, हे मनुष्यों तुम यदि सुखी रहना चाहते हो संतोष को अपने हृदय में धारण करो। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, वैभव संपदा संपत्ति और किसी भी वस्तु से जो सुख होगा उससे भी ज्यादा दिव्य सुख अनुत्तम सुख लाभ जिस सुख की कोई वस्तु के साथ तुलना नहीं कर सकती। किससे? संतोष से होने वाले सुख का, किसी संसार के किसी पदार्थ से होने वाले सुख के साथ तुलना नहीं कर सकते। अनुत्तम सुख लाभ, इसीलिए संतोष एव पुरुष से परम निदान। और नीतिकारों ने कहा है सबसे बड़ी संपदा ही संतोष है। जिसके पास संतोष की वृत्ति है उसके पास सब कुछ है और कुछ न होने पर भी वह परम सुखी है। और जिसके पास संतोष की वृत्ति नहीं है सब कुछ होने पर भी वह दुखी है। इसका मतलब सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं है क्योंकि उसको उससे सुख नहीं मिल रहा है। तो बताया, हे शिवा हे शंभु, आपके चरण से निकलने वाली आपके दिव्य चरित्र रूपी सरिता के ये दिव्य एक तो किलविसरज दलंती, अनेक जन्मों के सारे पाप रूपी धूल को वह बगा के नष्ट कर देगी। दूसरा धी कुल्या सरणिसु पतंती, वृत्ति के माध्यम से हृदय रूपी खेत में आकर वो परिपूर्ण होकर रहती है, भर जाती है, हृदय को भर देता है। और तीसरा संसार भ्रमण परिताप उपशमनम दिशंती, अनेक जन्मों की संसार यात्रा अनादि अनंत प्रवाह रूप से जन्म और मृत्यु की यात्रा करते करते जो तुम्हें खिन्नता ग्लानी परिताप हुआ है वो सारे परिताप को वह समाप्त कर देता है। वसंती मच्चेतो हृदभुभि शिवानंद लहरी, इस स्तोत्र का जो नामकरण ये द्वितीय श्लोक में हुआ है, ये शिवानंद लहरी मच्चेतो हृदय भूभि वसंती, हृदय रूपी खेत में ये नित्य निवास करे। कौन? एक तो ये यद्वयार्थक है, एक तो आपके चरणों से निकलने वाली सरिता, भक्ति की जो सरिता है, भाव की जो सरिता है, वो मेरे चित्त में भर जावे। जैसे अब बारिश होती है, बादल सब अपने जीवन का न्यूछावर करते हैं, तब बंबई के सरोवर बैतरणा, लोअर बैतरणा, अप्पर बैतरणा, तानसा, भातसा, क्या क्या सरोवर है ना, लबालब भर जाते हैं। बारिश नहीं हुई तो खाली होने लग गए। अब एक हफ्ता पहले पेपर में न्यूज आया था, अब खाली ये सभी बंबई के जो पानी सप्लाई करने वाले सरोवर में खाली एक महीने के लिए पानी बचा है। मैंने पेपर पढ़ा, खाली एक महीने के लिए। अब यदि जल्दी बारिश नहीं हुई तो पानी कटौती शुरू करना पड़ेगा मुश्किल से। हमने पहले, आप लोग तो बंबई बहुत साल से रहते हो, कई बार है ना पानी, बारिश लेट हुई और पानी की कटौती हुई। एक बार तो बंबई खाली करो, जाओ जाओ, आवश्यक व्यक्ति रहो, बाकी सब जाओ, नोटिस आ गया है, बीएमसी की तरफ से नोटिस आ गया। जो जरूर स्कूल के छुट्टी हो गए, स्कूल बंद कर दिया, और जो खास खास व्यक्ति बंबई में रहना जो आवश्यक वही रहे, बाकी सब वृद्ध लोग हरिद्वार जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, है क्योंकि पानी तो है ही नहीं, क्या करोगे, ऐसा नोटिस आ गया था। लेकिन अब कल से जब मानसून खूब हुई, मेघा खूब बरसे, तो अब बंबई वासियों को राहत मिल रही है, अब नोटिस नहीं आएगी बीएमसी की। लेकिन ये भी लगातार एक हफ्ता पंद्रह दिन यदि बारिश हो तब, अब कहीं एक दिन बारिश होकर फिर गायब हो गया एक महीने के लिए, फिर भरोसा नहीं है भाई। शंकराचार्य जी कहते हैं हृदय को परिपूर्ण करने वाला, वो तो आपके चरण से निकलने वाली जो दिव्य चरित्र रूपी जो सरिता है वही हृदय को लबालब भर सकती है। बसंती ही मच्चे तो हृदय भूमि शिवानंद लहरी, शिव आनंद लहरी, ये तीन वाक्य से ये नामकरण हुआ है। शिव वो अस्तित्व है, शिव अस्तित्व है और शिव के साथ शक्ति का संयोग होता है तो शिव प्लस आनंद शिवानंद, लेकिन वो शिवानंद भक्ति शक्ति के संबंध से ही तरंग में परिणत होते हैं। यदि भक्ति और शक्ति का संयोग नहीं हुआ तो वह जो शिवानंद है वह शिव के पास ही रहेगा, वो तरंगायित नहीं होगा, छलकेगा नहीं। इसलिए भक्ति के माध्यम से वो छलक जाता है। इसलिए शिवानंद लहरी ये स्तोत्र मच्चेतो वसंती, ये दिव्य 100 श्लोक वाला ये चरित्र है। शिव के आनंद से भरा हुआ, शिवानंद को प्रदान करने वाला, हमारे चिमन भाई जी के प्रेमपुरी आश्रम के जो पेपर है नवभारत टाइम्स में और पंपलेट और में तो ठीक लिखा है शिवानंद लहरी लिख दिया पत्रिका और में, लेकिन पेपर में क्या लिखा, शिवानंद गिरी जी लहरी लिख दिया है उन्होंने। अच्छा गुजराती पेपर में भी ऐसे लिखा है शिवानंद गिरी जी लहरी लिख दिया है वहां, क्योंकि जो आनंद के साथ जो गिरी पूरी लगने लगता है ना सरनेम, तो वहां शिवानंद है आत्मानंद गिरी, आत्मानंद गिरी आत्मा प्लस आनंद प्लस गिरी आत्मानंद गिरी, तो वहां सोचने वाले ने शिवानंद शिव का आनंद तो आनंद के पीछे गिरी लगता है तो लगा दिया अपनी मर्जी से, तो शिवानंद गिरी जी लहरी ऐसा लिखा है, लेकिन पत्रिका में ठीक है पंपलेट में ठीक है पेपर में ऐसा लिखा है। तो ये शिवानंद लहरी ये स्तोत्र का जो कंठस्थ हृदयस्थ कर लेगा कोई तो उसको हमेशा उसके हृदय में शिव के आनंद का तरंग ही तरंगायित होते रहेंगे। शंकराचार्य जी और आगे कहते हैं त्रयी वेद्यम हृद्यम त्रिपुरहरमाद्यम त्रिनयनम जटाभारोदारम चलदुर्गहारम मृगधरम महादेवम देवम महिषदय भावम पशुपतिम चिदालंबम सांबम शिवमति विडंबम हृदि भजे। त्रयी वेद्यम हे शिव, आपकी जो दिव्य महिमा है चरित्र है वो हम क्या जान सकते हैं, अपरंपार है, अपरंपार आपके दिव्य चरित्र को तो हम क्या जान पाएंगे। आपकी वो दिव्य महिमा तो त्रयी वेद्य है, गीता में श्लोक आया ना वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, कौन कह रहा है ये वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य कौन कह रहा है, हैं? अरे भगवान कहो ना, सीधे खत्म हो गया, कृष्ण क्या करते हो, भगवान कह रहे हैं ना? वो शिव भी वही कहते हैं, कृष्ण भी वही कहेंगे, राम भी वही कहेंगे, गणेश भी वही कहेंगे, सूर्य भी, जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या कहेंगे, त्रयी वेद्य है, सभी त्रय वेद्य, शिव भी त्रयी वेद्य है, कृष्ण भी त्रयी वेद्य है, नाम को क्यों झगड़ा में डालते हो। हम अभी थाईलैंड और म्यांमार की यात्रा में गए थे जनवरी में। बर्मा बोलते हैं ना पहला नाम, अभी म्यांमार कर दिया। थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड का राजधानी, उधर यात्रा में थे तो वहां एक जिज्ञासु आकर हमसे प्रश्न करने लग गए, महाराज ये कौन से भगवान सबसे बड़े हैं, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन सबसे बड़े हैं, हमसे पूछने लग गए। हमने कहा सभी भगवान बड़े हैं। बोले सभी बड़े तो होते नहीं भाई, घर में सभी बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो छोटे भी होते हैं कि नहीं, या कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। हमने कहा तुम्हें ये प्रश्न क्यों आया, ये प्रश्न तुमने क्यों की? तो उसने कहा कि क्योंकि महाराज हमारे यहां आते हैं भारत से, हिंदुस्तान से कुछ पंडित लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो वे लोग कहते हैं, कोई कहता है कि राम सबसे बड़े हैं, राम की भक्ति करो, और कोई कहते हैं कि नहीं सबसे बड़े कृष्ण हैं, कृष्ण की भक्ति करो। भागवत का उदाहरण देते हैं, राम आदि जितने भी अलग अलग अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवत में क्या कहा, ये ते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये उदाहरण देते हैं वे लोग। बाकी जितने भी हैं वो परमात्मा के एक एक अंश कला को लेकर भगवान हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण कला से भगवान हुए हैं। तब कृष्ण में 100% भगवत्ता है, राम में कुछ परसेंट भगवत्ता है। व्याख्या करने वाले यही करेंगे भाई, सांप्रदायिक, समझ गए कि नहीं? हाँ, ऐसी व्याख्या कर देते। कहते हैं कि और सब में तो एक एक अंश है और शिव तो पूर्ण, शिव परिपूर्ण, 100% भगवत्ता शिव में है, इसलिए महादेव, और सब में 100% भगवत्ता नहीं है, इसलिए उन लोगों को खाली देव देव देव देव कह दिया और शिव को महादेव कहा, तो सबसे बड़े महादेव। दूसरा आके कहता है सबसे बड़े कृष्ण, कृष्ण भक्ति करो। दूसरा कहता है सबसे बड़े महादेव, शिव भक्ति करो। तीसरा कहता है सबसे बड़े राम, राम भक्ति करो। कुछ कहते हैं नहीं सबसे बड़े तो सभी ने की है गणेश की, सबसे बड़े तो गणेश है, गणेश की भक्ति करो। तो जब इस प्रकार की बात हम सुनते हैं तो हमारे मन में यह शंका होती है कि वास्तव में सबसे बड़े कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, इसलिए हमने पूछा है महाराज। हमने उनको उत्तर दिया, देखो सबसे बड़े परमात्मा हैं। सबसे बड़े कौन है, भगवान है, परमात्मा है, न शिव बड़े हैं, न कृष्ण बड़े हैं, न राम बड़े हैं, न गणेश बड़े हैं। सबसे बड़े कौन है, तुम परमात्मा की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। नाम पर क्यों आग्रह रखते हो, कृष्ण तो एक नाम है, किसका? कृष्ण तो एक नाम है, किसका? परमात्मा का। शिव तो एक नाम है, किसका? कौन से परमात्मा का? कृष्ण ये नाम है जिस परमात्मा का, उसी परमात्मा का शिव ये दूसरा नाम है। मनुष्यों में भी 2-3 नाम होते हैं कि नहीं है? आप लोगों में भी होता है कि नहीं? एक राशि का नाम जो शास्त्रीय कर्म करने के लिए प्रयोग होता है, जहां ब्राह्मण किसी धार्मिक और शास्त्रीय वैदिक कर्म करने से पहले हाथ में जौ तिल कूस करके संकल्प कराता है, तो उस समय क्या कहता है, अपना अपना नाम लो। उस समय में ख्याल ये रख लेना जो आपके जन्म कुंडली का राशि का नाम है वही नाम लेना होगा। ये बुलाते समय में या स्कूल में लिखते हो टंटू पंटू क्या क्या लिखते हो, उससे संकल्प पूरा नहीं होगा भाई ना। राशि से जन्माक्षर से जुड़ा हुआ जो नाम है उस नाम को संकल्प में प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि राशि का नाम सार्वजनिक नहीं करते, इसलिए बुलाने का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, कुंडली का नाम अलग होता है। एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होंगे, अलग अलग नाम होगा, लेकिन नाम अलग होने पर व्यक्ति अलग नहीं होता। समझे कि नहीं? हम प्रेमपुरी आश्रम में तो बहुत साल से आ रहे, 2500 साल से कथा करने आ रहे, और पहले हम प्रेमपुरी कथा करने आते थे जब ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और पुराने लोगों को अभी भी मालूम होगा उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समय का जो नाम था आत्मा चैतन्य था। बहुत लोग अभी भी आत्मचेतन बोलते हैं। स्पिरिचुअल सेंटर के हमारे भक्त लोग तो अभी भी आत्मचेतन बोलते हैं, क्योंकि वहां हम बहुत पहले से जाते थे। अब वो आत्मचेतन की जगह नाम संन्यास लेने के बाद नाम परिवर्तन हो गया तो आत्मानंद जोड़ दिया। तो आत्मचेतन और आत्मानंद कोई आज भी यहां यदि कोई व्यक्ति आवे।
5: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi.

शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। स्वनाम धन्य प्रेम पुरी जी महाराज की। विचार चल रहा है श्री महिमन के ऊपर, पहले उच्चारण कर ले। 11 श्लोक है। आयत नादापाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरम दशाशो यद्बाहु नभृतरणकण्डूपरवशान् शिरापद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्। पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव महिमना में अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विचार किया था 10वें श्लोक में सृष्टि का कारणवाद, जो ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास भगवान ने विचार किया है, जन्माद्यस्यतः, जिससे संसार का सृजन, संसार का पालन और संहार हो, वही अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, वही ब्रह्म है, उसी को परमात्मा भगवान नाना नामों से पुकारते हैं। तो वहां पर अनेक प्रकार के मतभेद का उत्थापन किया था, खासकर तीन वहां पर विचार दिया था, आरंभवाद, परिणामवाद, असदवाद और विवर्तवाद। आरंभवाद तो न्याय दर्शन का है, परिणामवाद सांख्य दर्शन का है और क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन का है और वेदांत सिद्धांत विवर्तवाद मानता है। ये तो प्रधान जगत के विषय में विचार करने वाले हैं, पर इसके अतिरिक्त भी और कई हैं। यदि आप प्रारंभ से विचार करें तो सबसे पहले

चार्वाक दर्शन आता है, वह है स्वभाववादी। वह केवल चार ही तत्व मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु, और कहता है चार ही तत्वों से संसार उत्पन्न हुआ है, यह स्वाभाविक है। स्वाभाविक ही नदियां प्रवाहित हो रही हैं, स्वभाव से इस एक बीज को धरती में डालने के बाद अंकुरित होकर पौधा होता है, पल्वित पुष्पित होता है, स्वभाव से नष्ट हो जाता है। उसके दृष्टिकोण से शरीर ही आत्मा है और शरीर के संबंधित संसाधन या सुख प्राप्त करना स्वर्ग है और शरीर पात को ही मोक्ष कहता है। चार्वाक दर्शन जिसको हम भौतिकवादी कहते हैं, वे शरीर से भिन्न किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि पान है, पान के पत्ते होते हैं, उसमें चूना कत्था इस सब मिला करके जब चर्वण करते हैं तो लालिमा उत्पन्न होती है। ऐसे ही चार भूतों के, पृथ्वी जल तेज वायु जो चार भूत हैं, इन्हीं का एक विशेष अंश है जिसको हम चैतन्य कहते हैं। इससे भिन्न कोई चैतन्य नामक चीज नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं शराब का। जैसे शराब जो है किसी चीज को सड़ाकर बनाई जाती है, उसमें मादकता होती है। ऐसे चार भूतों का एक विशेष अंश है, उसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको लोग आत्मा कहा करते हैं, और शरीर पार्थी मोक्ष यह उसका सिद्धांत है। ये तो यहां तक कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े, मरने के बाद न कोई आत्मा है न परमात्मा है, इस स्वभाववादी चार्वाक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जैन दर्शन आता है, वह कहता है कि परमाणु से ही संसार का निर्माण हुआ, परमाणुओं के समुदाय का नाम है ये संसार। उसके दृष्टिकोण से भी ईश्वर की सत्ता अतिरिक्त नहीं है। जैन दर्शन को स्यादवादी दर्शन कहते हैं। हर चीज पर स्यादवाद, मतलब कि अस्ति च नास्ति च अस्ति च नास्ति च, कई विकल्प उठाते हैं। इसको सप्तभृंगी नय भी कहा करते हैं। इसके आगे बौद्ध दर्शन आता है। बौद्ध दर्शन ने बड़ा ही विचार किया है, पर बौद्ध दर्शन भी आत्मा के सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं, न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। कहते हैं कि शून्य ही जगत का मूल है, शून्य से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ। जैसे कोई आम का छोटा सा बीज हम धरती में डालते हैं, वह पहले नष्ट होता है, सड़ता है, गलता है, शून्य भाव को प्राप्त होता है, इसके बाद अंकुर निकलता है। इसके अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है जो संसार को बनाया। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि शून्य से जगत का सृजन हुआ और बाद में पुनः शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे न्याय वैशेषिक दर्शन आते हैं, जिसके विषय में परो द्रव्या द्रव्य से पुष्पदंताचार्य ने दसवें श्लोक में संकेत किया था। न्याय दर्शन आरंभवादी है। न्याय एवं वैशेषिक ये दोनों दर्शन समानांतर हैं, बहुत कुछ इनमें मिलता जुलता है। ये दोनों ही दार्शनिक कहते हैं कि परमाणु से संसार का सृजन होता है और नाश होने के बाद भी परमाणु रूप को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में सब परमाणु रूप हो जाएंगे, परमाणु से अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं होती है। न्याय दर्शन में एक यह भी मान्यता है कि परमाणु को ही ईश्वर भी कहते हैं। कुछ एक न्यायिकों का मत है, सबका मत नहीं है। ईश्वर के संकल्प से परमाणु से संसार हुआ। इसके बाद आता है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये आपका आरंभवादी नहीं है, बल्कि परिणामवादी है। जैसे दूध का परिणाम दही है या मिट्टी का परिणाम घट है, वैसे जो हम लोग दूध का परिणाम दही कहते हैं ना, ये लोकप्रवाद है। लोकप्रवाद मतलब किम वदंती चली आ रही है, परंतु परिणाम का लक्षण दूध दही में घटता नहीं। परिणाम उसे कहते हैं जिससे जो चीज बने
और बनने के बाद उस रूप में स्थिर रहे और मिटने के बाद तद्भाव को प्राप्त हो जाए, उसको परिणाम कहते हैं। दूध से दही तो बनता है, परंतु दही जब नष्ट होता है तो दूध रूप को प्राप्त नहीं होता है, तो परिणाम का लक्षण कहां घटा। एक लोक प्रवाद है, चला आ रहा है, समझने समझाने की प्रक्रिया है। प्रवास्तव में परिणामवाद का अधिष्ठान सही जो है आपका मिट्टी है या सोना है। आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, बनाने के बाद मृण्मय घड़ा होता है और फूटने के बाद भी घड़ा मृतिका के भाव को प्राप्त होता है। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये कहता है कि प्रधान से जगत हुआ, वह भी परमात्मा के सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं। कहते हैं कि जो प्रधान है, जो जड़ है, उसके द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ। प्रधान की परिभाषा है तीनों गुणों के साम्यावस्था को प्रधान कहते हैं, उसे संसार हुआ। इसके आगे मीमांसक आते हैं, मीमांसकों ने भी ईश्वर के सत्ता को नहीं स्वीकारा। ईश्वर के सत्ता को स्वीकारने वाले बहुत कम हैं। न्याय, वैशेषिक, वेदांती यही और योग भी स्वीकार करता है, चार हैं। तो मीमांसक कहते हैं कि सत्कर्म करो, बढ़िया कर्म करोगे तो जो है तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, घटिया कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। मतलब कि पश्चिम देश के नास्तिकों से हमारे देश के नास्तिक कुछ बढ़िया है, कम से कम सत्कर्म को मानते हैं। तो मीमांसक कर्म के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानता है कि जीवात्माओं के अपने दृढ़ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसके आगे वेदांत दर्शन है जो विवर्तवाद है। वेदांत कहता है कि उसी चैतन्य का ये संसार विवर्त है। इस प्रकार से दसवें श्लोक में संक्षेप से पूरे दार्शनिकों के विचार को पुष्पदंताचार्य ने रखा था और अंत में बहुत सुंदर बात कही थी। त्वाम स्तुवन न जिहरेमी, मैं इस प्रकार के शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं भटकता, नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और आपके प्रसन्न हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दसवें श्लोक में बतलाया। दस, ग्यारह और बारह, इन तीन श्लोकों में दार्शनिक तथ्य को बतलाने के बाद अब एक पौराणिक तथ्य बतला रहे हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में किस प्रकार से लोगों ने भगवान शंकर की उपासना करके अपने इष्ट को प्राप्त किया। सतयुग की घटना दसवें श्लोक में बतलाया कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिर्मय लिंग की स्तुति किया जिससे भगवान ने दर्शन देके दोनों को कृतार्थ किया। वे भी भगवान के यत्ता परिस्थिति को जानने का बहुत प्रयास किए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान हरि नीचे गए, परंतु दोनों ही भगवान के सीमा को, जिसको हम परिच्छिन्नता कहते हैं, माप कहते हैं, नहीं जान पाए, क्योंकि अनंत है वह तत्व। अनंत, अनंत का अर्थ होता है न विद्यते अंत यस्य अनंत, जिसका अंत नहीं। अंत का अर्थ है परिच्छेद। परिच्छेद तीन तरह से होता है, दैशिक, कालिक और वस्तुकृत। जैसे कि हम लोग बंबई में हैं, कोई बंबई में पैदा हुआ, वह व्यक्ति बंबई रूपी देश से परिच्छिन्न हो गया, सीमाएं बंध गया, उसको बंबई वाला बोलेंगे। विदेश में जाएगा तो भारतीय बोलेंगे। जीवन भर ये परिच्छेद उसके साथ लगा रहेगा, ये दैशिक परिच्छेद कहलाता है। दूसरा है कालिक, एक काल में वह उत्पन्न हुआ, एक काल में शरीर उसका छूट जाएगा, एक काल कृत परिच्छेद है। तीसरा वस्तुकृत है, उस पिंड को हम मनुष्य बोलेंगे, पशु नहीं बोलते हैं, परंतु जो परमात्मा है उसमें देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद शून्य होने के कारण उसको सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु भी उसको जान नहीं पाए किसका अंत क्या है, सीमा क्या है।
तो दसवें श्लोक में सत्युग के कहानी को बतलाया। अब इस ग्यारह श्लोक में त्रेता की बात बतला रहे हैं। पहले इस श्लोक का अर्थ कर ले। त्रिपुरहर संबोधन है, श्लोक का अर्थ करना हो तो पहले इसका अन्वय करना पड़ता है, अन्वय के बाद में तब जाके पदार्थोक्ति। तो त्रिपुरहर ये संबोधन है, हे त्रिपुरहर। त्रिपुर बोलते हैं ये जो तीन पुर है, तीन पुर मतलब के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों आविद्यक हैं। और जब तक हमारा ये तीनों पुर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, कारण बोलते हैं विद्या शरीर को। स्थूल तो आपको दिखाई दे रहा अन्नमय है, अन्न से बढ़ता है अन्न से घटता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं। और इसका भी कारण है अविद्या शरीर, जिसको हम कहते हैं कामना वासना। इन तीनों शरीर को ज्ञान प्रदान करके नष्ट करने वाले, कल्याण करने वाले हैं, इसलिए त्रिपुरहर कहते हैं। और दूसरा त्रिपुर का अर्थ है जीव जगत ईश्वर। जीव और जगत ईश्वर जो तीन पुर हैं, इन तीनों को ज्ञान से जो नष्ट करने वाले, मिटाने वाले हैं, इसलिए इनको त्रिपुरहर कहते हैं। शिरा पद्म श्रेणी रचिता चरणा भोरुह बले। रावण ने आपको कैसे प्रसन्न किया, तो त्रेता की घटना बतला रहे हैं। अपने शिर रूपी कमल को, शिर को भी हम कमल कहते हैं, शिर रूपी कमल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, एक के बाद एक सिर को चढ़ाते गया। इस प्रकार से नौ शिरों को कमल की तरह भगवान के चरणों में रख दिया। स्थिराया तद भक्ते, ऐसा न करना, यह स्थिर भक्ति थी। अपने शिर को बलिदान देना सबसे बड़ी चीज है। तो रावण कितने निष्ठा श्रद्धा के आपको ऊपर, उसने स्थिरता से बिना किसी चंचलता के अपने शिर को समर्पित किया। त्वद भक्ते है, और आपके भक्ति के कारण इदम विस्फोर्जितम, यह जो है ना पराक्रम ऐश्वर्य प्रताप प्राप्त किया। यतः दशास्य त्रिभुवनम, यतः मतलब इस स्थिर भक्ति के कारण से, क्योंकि उपनिषद में आता है यस देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी निष्ठा जैसे ईश्वर में है वैसे सद्गुरु में है, उसके लिए ही एक कथित अर्थ, उपनिषद अर्थ, शास्त्रीय अर्थ उसके अज्ञान अंधकार को दूर करके तत्व ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो ये जो रावण है वो अपने श्रद्धा भक्ति से अपने शिर को समर्पित करके दशास्य बोलते हैं दशानन रावण, त्रिपुरहर, त्रिभुवनम मल्ला के तीनों भुवन को, तीनों लोकों को अयत्नात बिना किसी प्रयास के अवैर व्यतिकरम, बिना वैर के बिना संग्राम के आपाद्य, सबको जो है अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद रणकंडू पर अवसान, फिर भी उसके 20 भुजाओं की जो खुजलाहट है नहीं मिटी। वह हमेशा अपना प्रतिद्वंदी ढूंढता था ताकि किसी से जरा मेरी कुश्ती हो तो जरा मेरी खुजली शांत हो। बाहुन अभृत, इस प्रकार के बाहुओं को उसने धारण किया। इस लीला का उद्देश्य इतना ही है, त्वद भक्ति स्थिराया, मतलब भगवान की स्थिर भक्ति। देखिए श्री महिमन के एक विशेषता है, प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में इस श्लोक का तात्पर्य क्या है उसको बतला देते हैं। अब हर श्लोक में देख सकते हैं, पहले श्लोक में कहा था कि निरपवाद स्तुति, दूसरे में कहा था कि अर्वाचीन जो पद है, जो सगुण साकार भगवान के विग्रह है, उसमें सबकी वाणी सबकी मन लग जाती है। तीसरे में अंतिम चरण में कहा था कि मैं स्तुति कर रहा हूं अपनी वाणी की और बुद्धि की शुद्धि के लिए। नवें श्लोक में बतलाया था कि आपकी स्तुति से
किमा अनुवृत्ति न फलती, अर्थात सब कुछ मिल